एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, वैशाख माह की तिथि 30, तदनुसार 20 अप्रैल ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच

चार दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमरीकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं शोभना जोशी।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान पूजा भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे शोभना जोशी। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं नरेंद्र चंचल एवं साथियों के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे गरिमा शीर्षा मंडल। सुबह 7 बजे समय होगा कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। माटी की महक, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बांग्ला गीत।

9 बजे विविध कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः प्रसारित किए जाएंगे दोपहर 1:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। पुनः 3 बजे से आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। शाम पाँच बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। शाम 5:05 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, शाम 6 बजे मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। हो अखड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। शाम 6:30 पर मनोरमा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इसके तुरंत बाद ज़िले में आजकल का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात के 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे गज़लों का कार्यक्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर्य के रंग श्रोता सुनेंगे रात के 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं गरिमा शीशा मंडल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थी गरिमा शीशा मंडल। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

जोहर चेबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है वरदान, स्वर है मोहम्मद रफी का।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से किशोर कुमार के स्वर में।

प्रेम पुजारी फिल्म के इस गाने के बाद श्रोताओं सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत सुरेश वाडेकर के स्वर में।

जोहार चाय बसा कार्यक्रम में श्रोता आइए अब सुनते हैं राजकुमार फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की।

परवरिश। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की।

0: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तो बनवे आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव वाली जरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मने आ है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
8: तुम लो बुरा मिसिंग काम सा Wanita tamsoya berupa senakana. Esok dukuran nanya. Siapa meriak, siapa meriak, wah betan kita.
9: Hanya pun do bumbai kurang, patan pun bumbai kurang. Hanya pun do kodomuri kurang, do patan patan itu kita mai kurang. Minimal buru-buru ni bagi atau kini dunia siar ti kalau polis kalau ni lari celau tanah. Buru-buru ni kuyang tapi jai terkaka kaku ko ini buka ko kaku melmiya. Aling
10: munisurin pete api letan aling si. जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका आले आया नु तुम तेना मिल अपील लेता।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण

0: अपितु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5,00,000 तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4,00,000 तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: जोहर चैबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं वक्त की आवाज़ फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ की।

पत्थर के फूल। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: پڑوسی ہے۔ پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں، پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سچ میں بل زیرو آ سکتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا نام ہی ہے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا۔ پھر ایک ایک کر کے سب کا بجلی بل زیرو آنے لگا، تب بولا اب لگوا ہی لیتا ہوں۔ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا، جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in۔ ہر گھر سوریہ گھر۔
1: نمسکار، آکاش وانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں وشال شرما۔ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष

0: और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC 132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
9: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और

0: त्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर

0: चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance.
1: Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200%

0: की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
2: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation and talent mobility. In the multilateral and bilateral engagements during his Oslo visit, Prime Minister Narendra Modi invited Nordic investments in areas such as green transition, blue economy, shipbuilding, health and defense. In light of the India-EU FTA and TEPA agreement, he conveyed India's keenness for stronger economic and commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The Prime Ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo, Norway.
1: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax, and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies, or government-aided education institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1, 2026. The Joint Parliamentary Committee, JPC, on One Nation, One Election has said the simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Gandhinagar, JPC chairperson P.P. Chaudhary said India had followed a synchronized election system until 1967 when Lok Sabha and the State Assembly elections were conducted together. He said the cycle was disturbed after the premature dissolution of seven state assemblies in 1968 and later during the emergency period. Gradually, elections across states went out of synchronization. Mr. Chaudhary said several institutions, including the Election Commission, the Law Commission and parliamentary committees, had over the years recommended simultaneous elections.
3: Prime Minister Narendra Modi constituted an 8-member committee under the leadership of our former President Ramnath Kovind. The committee also benefited from the guidance of Home Minister. Along with him, N.K. Singh, who is an economist, and Ghulam Nabi Azad, who is a prominent leader with vast political experience, were part of it. That committee submitted its report to the government, which recommended that simultaneous elections for the Lok Sabha and Vidhan Sabhas should be held in the country.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Uttar Pradesh is reeling under severe heat wave with record-breaking temperatures every passing day. We have a report.
4: Banda district in Bundelkhand region of the state continues to be the hottest place in the country on the third consecutive day. Maximum temperature here reached 48.2 degrees. There was no respite from the scorching sun to other places of the state also, and the maximum day temperature is oscillating between 44 to 47 degrees at many places. Even nights have become unusually warmer and the minimum temperature is close to 30 degrees in many districts. Animals and birds are worst hit by this mercury rise. Normal life is paralyzed and incidents of heat stroke have increased. The meteorological department has issued a red alert regarding severe heat wave in the state for next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
1: Madhya Pradesh is scorching and a severe heat wave. Orange and yellow alert has been issued for several districts as mercury hit 47 degrees Celsius for the first time in the state. We have more in this report.
5: Madhya Pradesh is reeling under intense heat. The blazing sun has made daily life very difficult. The Met Department has issued an orange alert for severe heat wave in several districts including Datia, Bhind, Rewa, Satna, Panna, Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwadi. A yellow alert has been issued for Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Jabalpur and dozens of other districts. The heat wave is expected to continue for the next 3 to 4 days. On Tuesday, Nogaon recorded 47 degrees Celsius and Khajuraho touched 46.4 degrees Celsius. This is the first time this season that the mercury has reached 47 degrees Celsius. In 22 cities across the state, the maximum temperature crossed 44 degrees Celsius. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, yesterday Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole of government and whole of society approach.
6: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses.
1: Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches on Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on the 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurel scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers is over to Shagun Chopra.
7: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. U.S. clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says the real question, OpenAI's win Musk's. Ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
8: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं और समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में सीआईआई की राउंड टेबल बैठक संपन्न। उद्योग सचिव ने कहा झारखंड में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रांची के निजी स्कूलों में लॉटरी पूरी। 641 बच्चों का मुफ्त नामांकन के लिए चयन। बोकारो, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। सीनियर और जूनियर वर्ग में जीते विजेता और उपविजेता के खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू आज सवेरे 10 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर नवनिर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा सहित फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाई ब्रेरी का उद्घाटन और अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक एसएस राजू ने कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची में आयोजित सीआईआई की राउंड टेबल बैठक में उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड देश के 44% खनिज संसाधनों के साथ सबसे उपयुक्त निवेश स्थल है। रांची में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं हैं और रांची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य में मैट्रिक और इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की चिंता बढ़ गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी क्रेडिट योजना बैंकों की उदासीनता के कारण धीमी चल रही है। 15 लाख रुपए तक के इस लोन में हो रही देरी पर अब पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार पर सोची समझी साजिश के तहत बैंकों से लोन रुकवाने का आरोप लगाया है।
9: बच्चों को लोन देने की बात है, वहाँ पर बैंक तरह तरह के जो है हथकंडे अपना किसी तरह से बच्चों के लोन को रोक रहा है, पर इस पूरी प्रक्रिया में हमारी जानकारी है वो यह है, इसमें बैंक जिम्मेवार नहीं है, बल्कि बैंक को इंस्ट्रक्शन साफ साफ ऊपर से फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है कि जानबूझकर के कम से कम बच्चों का लोन जो है अप्रूव किया जाए और उसको टेक्निकल कारण बता के रिजेक्ट किया जाए।
7: वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के राजनीतिक दखल और साजिश के कारण बैंक इस योजना में उदासीन रवैया अपना रहे हैं।
10: देखिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना यह सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को संभालने का एक महत्वाकांक्षी योजना। लेकिन दुख है कि केंद्र की सरकार लगातार इस राज्य के प्रति सौतेलापन का व्यवहार तो करती ही है, बैंकों के द्वारा इस योजना पर भी ग्रहण लगाने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा है।
7: राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने कल रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण के मामले की जांच तेज हो गई है। झालसा की टीम ने प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाया है। इधर रांची उपायुक्त ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। रांची के एसडीएम कुमार रजत ने बताया कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर हुई इस पारदर्शी प्रक्रिया में 89 निजी विद्यालयों की आरक्षित सीटों के लिए बच्चों का चयन किया गया है।
11: 1499 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 1036 एप्लीकेशन जो है वो करेक्ट पाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो 25% जो भी सीट्स हैं उसको हम लोग फुलफिल करेंगे और उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
12: किस स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन हो जाए?
13: एक पेरेंट्स जो है वो 3 स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है, उसमें एक इनकम का क्राइटेरिया है, एक उसमें डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, इसके अलावा बाकी अपना जो आधार कार्ड और ये नॉर्मल है।
7: रांची नगर निगम ने नगर आयुक्त के नाम पर आ रहे फर्जी व्हाट्सएप संदेशों को लेकर अलर्ट जारी किया है। निगम ने बताया कि +84 से शुरू होने वाला नंबर पूरी तरह फर्जी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसे संदिग्ध नंबरों पर अपनी बैंकिंग या निजी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। रांची के नामकुम पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने गुप्त सूचना के आधार पर सिद्रौल जोड़ा मंदिर के पास घेराबंदी कर यह कार्रवाई की।
14: नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाचे बाइक था उसको हम लोगों ने पूछताछ की। उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है, नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है। बाइक को वो बेड़ो का एक वसीम औहदार है उसके पास लेके जा रहा है।
7: मौसम विभाग ने आज बोकारो, धनबाद और देवघर समेत 9 जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, हजारीबाग और सिंहभूम सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाओं के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और वर्षा हो सकती है। झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार सफलता हासिल की है। ताशकंद रग्बी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे डेविड मुंडा का रांची में भव्य स्वागत हुआ। वहीं रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सीनियर पुरुष स्ट्रोक और महिला फेयरवे वर्ग में झारखंड की टीम विजेता बनी। वहीं जूनियर बालक स्ट्रोक, जूनियर बालिका फेयरवे और जूनियर बालक फेयरवे प्रतियोगिताओं में टीम ने उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल और उप कप्तानी KL राहुल करेंगे, जबकि वनडे में श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। इस सीरीज के लिए झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की 3 साल बाद वनडे टीम में शानदार वापसी हुई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीआईआई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, महिला पार्षद का आरोप, बैठक में मेरी आपत्तिजनक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाला। हिंदुस्तान ने पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त मंत्री का बड़ा सवाल, घोटालेबाज डीडीओ सीआईडी जांच टीम से दूर है ना, सुनिश्चित करें। दैनिक जागरण ने लिखा है, सबसे गर्म रहा पलामू, कई जिलों में पारा 40 के पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में सीआईआई की राउंड टेबल बैठक संपन्न। उद्योग सचिव ने कहा, झारखंड में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रांची के निजी स्कूलों में लॉटरी पूरी, 641 बच्चों का मुफ्त नामांकन के लिए चयन। बोकारो, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, सीनियर और जूनियर वर्ग में जीते विजेता और उपविजेता के खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी की महक।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गीत, गायक कलाकार थे कुमार शानू। इसके साथ ही माटी की महक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में हम हर रोज़ कुछ नई जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जानेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आज यानी कि 20 मई को पूरे विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मधुमक्खियों के महत्व तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। श्रोताओं, मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं देती बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसके बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। श्रोताओं, मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्र करती हैं और परागण का कार्य करती हैं। परागण के कारण पेड़ पौधों में फल और बीज उत्पन्न होते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक फल, सब्जियां और फसलें मधुमक्खियों पर निर्भर करती हैं। श्रोताओं, इसके अतिरिक्त मधुमक्खियों से हमें शहद, मोम तथा अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। शहद स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है और आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व होता है। श्रोताओं, आज प्रदूषण, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और जंगलों की अनावश्यक कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या बेहद कम होती जा रही है। यह एक चिंता का विषय है। विश्व मधुमक्खी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि यदि मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी तो खाद्य उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस दिन विद्यालयों, संस्थानों और विभिन्न संगठनों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को पेड़ पौधे लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। श्रोताओं, मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए हमें कई सारे उपाय करने चाहिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में मधुमक्खियां हों और इसका लाभ हमें शहद के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए श्रोताओं, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित बनाए रखना चाहिए और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं

0: मधुमक्खी दिवस के बारे में। कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ਨਾਲ ਸਵਯਮ ਹੀ ਘਟ ਪੜੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸੈਨਾ।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
3: बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तब बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलवार को गांव बारे करा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: तुम लो बुरा मिसिंग काम सोए अनुता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना अन्य जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन न तुम कितने ही कोड़ा मुनि में उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के यूं दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दुरुगम गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आ गया बेटा हुरेन का अली आया न तुम कहीं ना मिल आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नारी शिक्षा पर आधारित यह भेंट वार्ता। जानकारी दे रही हैं शिक्षिका विजय लक्ष्मी एमरम और उनसे बातें कर रही हैं बीएम मंजू बोद्रा।
10: विजय लक्ष्मी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
11: नमस्कार। जैसे कि आज के हमारे चर्चा का विषय है नारी शिक्षा, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा है क्या।
12: शिक्षा का साधारण अर्थ हम पढ़ाई लिखाई से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा वो है जो हमें अपने उत्तरदायित्व के बारे में सही ज्ञान देती है, हमारा क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, ये हमें सही तरीके से बताती है।
11: ये तो है। और नारी शिक्षा क्या है?
12: और जहाँ नारी शिक्षा की बात होती है, तो जिस तरह समाज के दो धुरी हैं या दो पहिए हैं कहना चाहिए, पुरुष और नारी, तो यदि एक

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा,

0: उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, जोहार। रांची कार्यक्रम में अब जानते हैं मौसम का हाल। तो राज्य में बुधवार को पलामू और आसपास के जिलों को छोड़कर संताल परगना समेत तीन जिलों में आंधी के साथ बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी आज। और मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत अन्य भागों में भी मौसम बदलाव होने की संभावना है। पलामू और आसपास के जिलों में इस दौरान गर्मी का पारा बढ़ने का अनुमान है। मंगलवार को रांची का तापमान 37.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को संताल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मौसम बदलाव की संभावना कम है। इन जिलों में उमस की गर्मी के साथ तापमान बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है, यानी कि इन जिलों में अभी गर्मी से राहत नहीं है।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम है जोहार रांची, और अब रुख करते हैं श्रोताओं इतिहास की तरफ और प्रमुख घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो आज के दिन घटी थी। आज है 20 मई। तो 20 मई 1992 को भारत ने स्वतंत्र रूप

से अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट पहुंचे थे आज के दिन। 1902 में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्यूबा पर सैन्य कब्जा समाप्त हुआ और देश को आज़ादी मिली थी। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए पहली एकल नॉन स्टॉप अटलांटिक उड़ान भरी थी आज के दिन। 1932 में महान स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल, जो लाल बाल पाल तिकड़ी के सदस्य थे, का निधन आज के दिन हुआ था। 1990 में नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष से पहली बार पृथ्वी पर तस्वीरें भेजने में सफल रहा। 2006 में चीन का थ्री गॉर्जेस डैम आधिकारिक तौर पर बनकर तैयार हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का आज के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावे हिंदी जगत की प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म भी आज के दिन हुआ था 1900 में। 1918 में 1947 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिक पीरू सिंह का जन्म भी आज के दिन हुआ था। और अब बात करते हैं निधन की, तो 1929 में राजकुमार शुक्ल का निधन आज के दिन हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे। भारत के प्रकाशम का निधन भी आज के दिन हुआ था 1957 में। वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री भी थे। 1972 में ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। और प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान लीला दुबे का निधन भी 2012 में आज ही के दिन हुआ था। और 2011 में झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था। सुनते हैं ये गीत।

0: उसमें मैं एक साल तक कार्यरत था और फिर अभी मैं यहाँ पे आईपीएस में आके और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये मेरा फर्स्ट एसपी पोस्टिंग है, एसपी ट्रैफिक रांची।
1: सर, इस जिम्मेवारी को निभाते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
0: निसंदेह ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, खासकर जब आपको प्रदेश की राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का उत्तरदायित्व दिया जाए तो ये निसंदेह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप भी है काम करने का बहुत। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कुछ मैं रांची वासियों के ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं थोड़ा सा भी अगर बदलाव यहाँ पे ग्राउंड पे मैं बदलाव कर पाता हूँ तो मुझे लगेगा कि मैंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और मुझे काफ़ी संतोष मिलेगा अगर मैं कुछ अच्छा कर पाता हूँ।
1: सर, इतनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और व्यस्ततम जिंदगी को बिताते हुए मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फुर्सत के लम्हे आपको मिल पाते होंगे, लेकिन फिर भी कभी आपने पीछे मुड़कर देखा है उस बचपन को जो जहां आपने स्कूल में समय व्यतीत किया और जहां से आप निकल कर आए, तो उन क्षणों को याद करके ज़रूर कभी कभी मन प्रफुल्लित हो उठता होगा। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी बात जो आप हमारे श्रोताओं के साथ भी साझा करें?
0: देखिए, हमेशा ये मनुष्य का एक बर्ताव या नेचर कहिए वो होता है कि जब भी वर्तमान में वो परेशान हो तो वो अपने पुराने जो व्यतीत किए हुए हैं अच्छे क्षण होते हैं उनको याद करना, तो स्वाभाविक है मेरे साथ भी ऐसा रहता है। और सबसे अच्छा पल तो मुझे वही लगता है जब हम गांव में रहते थे और ये दुनिया की आवभगत और इस भागदौड़ की दुनिया से दूर और अपने ही एक छोटे से गांव में, छोटे से उस समाज में खुश रहना। बहुत ज़्यादा ना तो एस्पिरेशंस का दबाव होता था, ना तो अपेक्षाएं कुछ ऐसा होता था, ना बहुत ज़्यादा बड़े सपने होते थे। जितना हो रहता था उतने में खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा मिलजुल के। जो भारतीय ग्रामीण जो एक संस्कृति है कि हर दुख सुख एक दूसरे के साथ मिलके बांटना और पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है और वहां पे सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं, एक दूसरे को के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत हमेशा रहता था कि किसी एक के घर में दुख हो तो पूरा गांव एक साथ सपोर्ट के लिए आ जाता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं और जो बचपन भी मेरा रहा है बचपन के दोस्तों के साथ, वहाँ गाँव के दोस्तों के साथ, तो वो पल हमेशा याद आता है। और इस भागदौड़ की दुनिया में वो सुकून के जो पल थे वो निसंदेह बहुत मिस भी करता हूँ और हमेशा कोशिश भी रहती है कि गांव में जाके फिर से उन क्षणों को फिर से जीने की।
1: सर, कहते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, तो अभी खुशी आपके चेहरे पर हमें भी झलक रही है। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ट्रैफिक एसपी होने के नाते जो राजधानी रांची में आप अभी पदस्थापित हैं, तो इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कभी जो फुर्सत के पल आपको मिलते हैं तो आप उसमें ज़्यादातर क्या करना पसंद करते हैं?
0: देखिए, इस ट्रैफिक की जिम्मेवारी में बहुत ज़्यादा तो वक्त नहीं मिल पाता है, परंतु मेरा जो प्रतिदिन की दिनचर्या है उसमें मैं योग ध्यान हमेशा करता हूँ, तो सुबह मेरा थोड़ा सा एक्सरसाइज और योग ध्यान मेरे दिनचर्या का अभिन्न अंग है। और उसके बाद जो थोड़ा फ्री टाइम मिलता है दिन भर की भाग दौड़ में, तो मैं कुछ गाने सुनना या कुछ मूवीज़ देखना या फ्री टाइम में मुझे किताबें पढ़ने का भी काफ़ी शौक है, तो वो सब चीज़ों में मैं अपना टाइम व्यतीत करता हूँ।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर कि साहित्य और संगीत दोनों से आपको रुचि है। सर, अगर गीत कोई ऐसा जहन में हो जो आप सुनना चाहें तो मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम में आपकी पसंद का एक गीत हम भी सुने।
0: देखिए, मुझे पुराने गाने काफ़ी पसंद हैं, तो उसमें किशोर जी के, मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर जी के और जगजीत सिंह, गुलाम अली के गज़ल, इन सब का पसंद है। और सबसे फेवरेट मेरा जो गाना है वो किशोर जी का है कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना, तो ये गाना मुझे काफ़ी पसंद है। मैं अपनी ज़िंदगी भी मुझे इसी तरह से लगती है।

0: मैं उसी तरह से ज़िंदगी भी जीने की कोशिश करता हूँ, तो ये गाना मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप सब सुने।
1: जी ज़रूर, तो सर की पसंद का आइए श्रोताओं हम भी आनंद लेते हैं इस गीत का।

गीत के बाद पुनः स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। आज हमारी बातें हो रही हैं कार्यक्रम में ट्रैफिक एसपी रांची श्री राकेश सिंह सर से। सर, अब आपके

0: जिम्मेदारियों की बात हम करना चाहेंगे कि यातायात में होने के नाते, यानी एक पुलिस अधीक्षक यातायात होने के नाते, आपके कंधों पे जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के क्रम में किन किन समस्याओं को ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है?
1: देखिए, ट्रैफिक में सबसे बड़ी समस्या जो मुझे यहाँ पे मेरे 6 महीने के अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जो आम नागरिकों का अपना जो एक कह सकते हैं ट्रैफिक के प्रति जो सिविक सेंस है, जो अवेयरनेस ट्रैफिक के प्रति, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इसी वजह से जहाँ तहाँ गाड़ियाँ पार्क कर देना, ऑटो और टोटो जो होते हैं वो जहाँ पे कहीं भी सड़क के बीच में खड़े करके सवारी चढ़ाना उतारना, या जो बाइकर्स होते हैं रॉन्ग साइड से ड्राइव करना, बिना हेलमेट का उपयोग करना, तो ये जो एक पार्ट है जो अवेयरनेस यातायात नियमों के प्रति, वो नागरिकों का कहीं ना कहीं और बढ़ाने की आवश्यकता है और उनको स्वयं भी जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। और दूसरा, जैसे हर पुरानी सिटी में ये एक समस्या रहती है कि जिस पेस से सिटी का ग्रोथ हो रहा होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रही होती हैं और जिस तरह का ट्रैफिक सड़कों पे बढ़ रहा होता है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वो उस पेस में नहीं डेवलप हो पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है उतने रिसोर्सेस और उतना डेवलपमेंट करने के लिए उतने रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, जिसको करने के लिए बहुत बहुत सारी और परेशानियां होती हैं। तो निसंदेह जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत रहता है, वो हर डेवलपिंग सिटी में यही चीज़ रहता है कि जो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच, तो वो भी एक ट्रैफिक का बॉटलनेक होता है। परंतु यहाँ पे बहुत अच्छा एक पूरा वातावरण है जिसमें काम करके बहुत अच्छा भी मुझे लग रहा है, और मेरा सतत यही प्रयत्न रहता है कि रांचीवासियों को ट्रैफिक का अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, और ये इसी में हम लोग पूरा फोकस्ड रहते हैं।
0: इस जगह पर पदस्थापित होने के पीछे क्या प्रेरणा रही आपकी, किस तरह से आपने लक्ष्य को निर्धारित किया और यहाँ तक पहुँचे? मैं चाहूँगी कि आपके इन बातों से हमारे आज की युवा पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिले।
1: मेरा सिविल सर्विसेज में आने का जो प्रेरणा था, वो मुझे जो मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी हैं, और बचपन से मैं उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक मेरा जो लगाव था, जो झुकाव था कि जनता को, समाज में कुछ सेवा करना, समाज के लिए कुछ काम करना, तो उसी मोटिवेशन से मेरा पब्लिक सर्विसेज की वजह की तरफ झुकाव हुआ। और हमेशा मेरा यही उद्देश्य रहता है कि समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, कुछ लोगों का जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसको अगर थोड़ा भी हम राहत उनको दिला पाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो सार्थक जीवन होगा। तो मेरा सभी युवा साथियों से भी यही निवेदन रहेगा कि जीवन में अपने साथ साथ समाज के लिए भी जिए, समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, उसको भी अपने ध्यान में रखिए, जहन में रखिए, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें 10% फोकस आप इस चीज़ पे रखिए कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी राष्ट्र महान तभी होता है जब उसके नागरिक ये सोचें कि हम अपने राष्ट्र को महान कैसे बनाएंगे। और राष्ट्र को अगर महान बनाना है तो अपने से थोड़ा ऊपर उठ के अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए भी थोड़ा थोड़ा कर्तव्य करना ज़रूरी है।
0: सर, कार्यक्रम में विशेषकर आज युवाओं की बात करूंगी, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि उनमें भटकाव बहुत जल्दी आ जाता है। जितनी तेज़ी से हमारी तकनीकी क्षेत्र में विकास हुए हैं, उतनी ही तेज़ी से युवाओं का मन परिवर्तित होते हुए भी हमने देखा है। कई बार देखा जाता है कि जब बेरोज़गारी होती है तो ऐसी स्थिति में भी वो काफ़ी तनावग्रस्त नज़र आते हैं और अन्यत्र पलायन भी हो जाता है, और साथ ही साथ कई गलत रास्ता भी इख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या अपनी ओर से कहना चाहेंगे?
1: मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं साझा कर सकता हूँ, बाकी हर युवा का अपना विवेक है जो वो निर्णय लेना चाहे। सबसे पहला तो जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जीवन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कुछ स्कूल के मार्क्स या किसी कॉलेज के डिग्री तक सीमित नहीं होता। मनुष्य जीवन बहुत बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद प्राप्त होता है। तो पहले तो आप सिर्फ इसको इस छोटे से टनल व्यू से देखना जीवन को बंद करें। दूसरा ये चीज़ है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि किसी एक जगह, दो जगह, चार जगह आपको सफलता प्राप्त नहीं हुआ, पर इसका ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि आपको भविष्य में भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमेशा जो प्रयत्न करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनको सफलता जरूर प्राप्त होती है। हाँ, हर इंसान का सफलता की जो यात्रा होती है वो भिन्न भिन्न होता है। किसी को शुरुआती जीवन में ही मिल जाता है, किसी को शायद बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अड़चने आती रहती हैं। पर जीवन का जो सारांश है वो यही है कि जो भी जीवन में आपको आए उसे सहर्ष स्वीकार करें, और जिन परिस्थितियों में ईश्वर ने आपको डाला है उन परिस्थितियों में आप कितना अच्छा कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उन परिस्थितियों में आप अपना कैसे धैर्य बना के कैसे आप आगे बढ़ते हैं अपने साहस के साथ, बुद्धि विवेक के साथ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में आप लोग गलत रास्ते पे ना जाएं, खासकर से आजकल जो नशे का एक प्रचलन हो गया है, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो सिगरेट हो या अन्य तरह के कोकीन हुरेन, दुनिया भर के ये टेंडेंसीज शुरू हो गई हैं ड्रग एडिक्शन का। इन सब से हर युवा को बच के रहना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है। आपका घर परिवार समाज सब बर्बाद कर देता है। तो समस्त युवाओं से यही आग्रह है कि कभी भी गलत रास्ते पे ना जाइए, विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करें और उसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं आप वो करिए, ईश्वर जरूर आपको सफल बनाएगा।
0: सर, अब जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि आपके द्वारा एक संदेश पहुँचे कि यातायात के नियमों का उल्लंघन अगर हम करते हैं तो क्या नुकसान हमें हो सकता है, और साथ ही साथ अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो क्या फ़ायदे हमारे लिए हैं।
1: मेरा हर मैसेज जो यातायात नियम पालन करने के खातिर लोगों के लिए होता है वो एक ही रहता है कि ये जो भी नियम बनाए गए हैं वो आपकी सुरक्षा, आपके जीवन की सुरक्षा, आपके जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा के खातिर बनाए गए हैं। हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट्स में, और आप कभी भी देखिए किसी भी परिवार से जाके मिलिए जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम हैं, उनका पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, जीवन भर की खुशियां खत्म हो जाती हैं अगर जिनके भी घर में एक एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है। तो सबको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हेलमेट पहनना सरकार ने नियम बनाया है, ट्रैफिक पुलिस उसकी लगातार जांच करती है, आप नहीं पहनते हैं तो आप पे कड़ाई से कार्रवाई की जाती है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको परेशान करना चाहते हैं या सरकार आपसे पैसा वसूलना चाहती है। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि आपके अंदर एक अनुशासन डेवलप करना कि आप हेलमेट पहने, और अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो आपके जीवन की सुरक्षा होती है। तो ट्रैफिक नियम पालन करना सब नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस लापरवाही से आपके जीवन और मृत्यु निर्धारित होती है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन में सबसे अगर कोई कीमती चीज़ है तो वो उसका जीवन है। तो अपने जीवन के साथ जोखिम मत उठाइए, जिम्मेदार नागरिक बनिए और इन नियमों का पालन करिए।
0: बिल्कुल सही बात है सर, और मुझे तो लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि अगर मन में भटकाव आता है और हम तनावग्रस्त होते हैं तो योग और ध्यान बेहद अच्छी प्रक्रिया है अपने मन को शांत करने के लिए। उसके साथ साथ अच्छे गीत संगीत सुनना भी हमारे लिए सेहतमंद साबित होता है। सर, आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़े हुए हैं आपने बताया, तो हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम सभी लोग, चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग के हों, तो हम अपने आप को योग और ध्यान के जरिए किस तरह से शांत चित्त रख सकते हैं?
1: योग ध्यान हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा विज्ञान हमें धरोहर के रूप में दिया है जो शायद पूरे ब्रह्मांड में उस जैसा कोई और विज्ञान नहीं है, क्योंकि आप

0: भी अपने स्तर पे हर मनुष्य ने ये अनुभव किया होगा कि जीवन भर जो समाज में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करना है, कुछ अगर कोई गलती हो गई तो क्या करना है, आपके साथ कोई घटना हो गया तो क्या करना है, हमेशा सिखाया जाता है। पर आपके अपने शरीर और अपने मस्तिष्क में अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें कभी नहीं बताया जाता कि उसको कैसे करना है। और अपने मस्तिष्क और स्वास्थ्य को अगर कोई उसके उसका रामबाण है उसको अच्छा करने का, तो वो योग और ध्यान है। और ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है। एक युवाओं में एक वहम ये भी रहता है कि ये रूढ़िवादी विचारधारा का मानसिकता का ये है और इसके करने इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है, अंधविश्वास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हजारों ऐसी स्टडीज़ हो रखी हैं जो इनके पॉजिटिव बेनिफिट्स के बारे में डॉक्यूमेंट हुआ है, कैसे कैसे इनसे सहयोग मिलता है लोगों को, कैसे मदद मिलती है। जैसे अगर आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है उसकी बात करें, बहुत ही ब्यूटीफुल साइंटिफिक टेक्निक है जो एक ब्रीदिंग साइंस के ऊपर है। वो हमारे श्वासों को और हमारे मन के बीच में जो एक बहुत घनिष्ठ जो जुड़ाव रहता है कि जैसी हमारी भावना होती है वैसी हमारी ब्रीदिंग रिदम होती है। गुस्से में जब हम होते हैं तो ब्रीदिंग रिदम फास्ट होता है, अगर हम थकान होती है तो ब्रीदिंग रिदम डिफरेंट होता है, हम खुश होते हैं तो हमारी श्वास की गति अलग होती है। तो सुदर्शन क्रिया में इसी का रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरह से आप समझ सकते हैं, वो है कि हम ऐसी ब्रीदिंग रिदम फॉलो करते हैं कि जो आपकी मन स्थिति होती है वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है और वो ध्यान मुद्रा में हो जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारी और टेक्निक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो योग और ध्यान सिखा रही हैं। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग इस वजह से बताया क्योंकि उसे मैं पिछले 20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि इससे बेहतर अपने जीवन में कुछ और दिनचर्या में जोड़ने लायक कुछ भी और नहीं है। अगर आप आधे घंटे योग ध्यान करते हैं तो आप पूरा दिन भर बाकी के 23-23.5 घंटे आप एकदम फुल एनर्जेटिक पॉजिटिव माइंडसेट और एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आप अपना जीवन जीते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सभी यंग और हर एज के नागरिकों से कि योग ध्यान जरूर करिए।
1: ये आपने बेहद महत्वपूर्ण संदेश अपनी ओर से दिया। मैं समझती हूँ कि अगर योग को अगर जीवन में उतारा जाए तो हम स्वस्थ और निरोगी काया अपनाकर अपने काम सहज रूप से कर पाएंगे। सर, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए, साथ ही साथ अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी परिवार का भी और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी विशेष बातचीत पुलिस अधीक्षक यातायात श्री राकेश सिंह सर से। आज की चर्चा से हमें यह समझने का अवसर मिला कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें, अनेक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसे आप अगर जहन में उतार लेते हैं तो आप अपने जीवन में लापरवाह कभी नहीं होंगे। श्रोता मित्रों, सर के व्यक्तिगत जीवन की बातें भी हमने सुनी और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बातों पर इन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस बातचीत के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सिंधु मिश्रा को दें इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम श्री राकेश सिंह पुलिस अधीक्षक यातायात रांची से सिंधु मिश्रा की बातचीत पर आधारित था। प्रस्तुतकर्ता थे प्रभु शरण।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद में सबसे पहला गाना हम सुनवा रहेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस गाने के लिए फरमाइश कहां कहां से आई है। सबसे पहले दुबिया नेवादा गाजीपुर से हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश लिख भेजी है। आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। पथरिया से आप हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम। बक्सर बिहार से हमारे श्रोता हैं फातिमा खातून अंसारी, शरफुद्दीन अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से हैं आप आसमानाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा। सारिमपुर बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सभी सुनना चाहते हैं बादशाह फिल्म का ये गाना, जिसे गाया अभिजीत और अलका याग्निक ने। अनु मलिक का संगीत है और इस गीत को लिखा है समीर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

Medicina! अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं इस फिल्म से। आवाजें अलका याग्निक, अनुराधा पौड़वाल, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और उदित नारायण की है। शब्द रचना राज किरण की है और संगीत है राम लक्ष्मण का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमारे श्रोता हैं मीका विरक, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और हरदेव मीका। सरगुजा मैन पार्ट से आप हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। जेल रोड मथुरा से आप हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। आप सबों की फरमाइश पर हम साथ साथ हैं फिल्म का ये

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले हमारे श्रोताओं का नाम जिन्होंने अगले गाने के लिए फरमाइश की है। आप हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से हमारे श्रोता हैं वली उल्लाह फकीर, डब्ल्यू उल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर। बुलंद शहर से आप हैं बद्रुवली अंसारी, फर्जुवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी। कांके रोड रांची से हमारे श्रोता हैं रमेश प्रसाद जायसवाल, अनुप्रिया, मंटू, मोनू, सोनू और बजरंग मिर्धा। कोल सिटी बरकाकाना से फरमाइश आई है, आप हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजल इब्राहिमी। आपको सुनवा रहे हैं जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म का गाना। आवाजें कुमार सानू और लता मंगेशकर की है, जतिन ललित का संगीत है और बोल हैं आनंद बख्शी के।

और इस गाने के बाद अगली फरमाइश आई है हाजीपुर से। आप हैं नीतू सिंह, राकेश सिंह, डॉली सिंह, तेजस्व चौहान और प्रणव राज। सासाराम से आप हैं ममता पांडे, माधव, बेटा यशराज।

इनके परिवार के सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है SD बर्मन का, और ये कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना है।

और इस गीत के साथ ही आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से मीनाक्षी को दीजिए विदा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, 12 बजे हैं और अब वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। गृह लक्ष्मी में आज आपके साथ हैं मधु और शिल्पी।

0: बैनो हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है, तो क्यों ना सुबह का और दिन की शुरुआत खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए और निहारते हुए करें।
1: हाँ बहनों, दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, तो वहीं पूरे दिन उत्साह और ताजगी भी बनी रहती है।
0: अच्छा, तब तो हमारी बहनें बेखौफ होकर मुस्कुराहट का आदान प्रदान करेंगी मधु, है ना। और जब आज कार्यक्रम में मधु मुस्कान बिखेरने वाली हैं सखी, तो फिर सखियां भी हमें ऐसा लगता है जो हमें हमारी सखियां हैं सुन रही हैं ना, वो हंसे रह नहीं पाएंगी।
1: देख रही है ना सखियों, शिल्पी ने आते ही मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी।
0: अरे भाई सखी, तारीफ अगर सही हो तो क्यों सकुचाना, है ना। तो चलो भाई, बातें तो हमारी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन जो हमारी सखियां अभी कार्यक्रम सुन रही हैं, उन्हें अब आगे क्या है ये बताना हम चाहते हैं।
1: बहनों, वैसे तो आप हम दोनों को समझ ही गई होंगी और हमें पहचान भी लिया होगा, है ना। सही पहचाना, आज के सफर में हम दो सखियां मधु और शिल्पी हैं।
0: जी हाँ बहनों, सभी का स्वागत है कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे महान कवि की जिनकी लेखनी में क्रांति की ज्वाला थी, जिनकी कविताओं ने अन्याय और गुलामी के खिलाफ लोगों के दिलों में आग जलाई।
1: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सखियों विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की। नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 को पश्चिम बंगाल के चिरुलिया गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था।
0: हाँ बहनों, बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया, इसलिए छोटी उम्र में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है।
1: नजरुल साहब के जीवन में भी यही संघर्ष आगे चलकर उनकी ताकत बना। बचपन से ही उन्हें कविता, संगीत और साहित्य में रुचि थी,
0: और बचपन में ही वे लोक नाट्य दलों के साथ जुड़ गए और वहीं से उनके भीतर का कलाकार निखरता गया। काजी नजरुल इस्लाम ने न केवल कविताएं लिखी बल्कि गीत, कहानियां और नाटक भी रचे।
1: बहनों, उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता विद्रोही थी। इस कविता ने पूरे समाज में नई चेतना जगाई। उनकी रचनाओं में अन्याय, शोषण और गुलामी के खिलाफ आवाज सुनाई देती थी।
0: हाँ बहनों, वे हिंदू मुस्लिम एकता और मानवता के बड़े समर्थक थे। उनके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा गुरु धर्म था।
1: जब देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था बहनों, तब नजरुल की लेखनी लोगों में आजादी की अलख जगा रही थी।
0: उन्होंने धूमकेतु नामक पत्रिका निकाली जिसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ लेख लिखे जाते थे। उनकी क्रांतिकारी सोच से अंग्रेज सरकार घबरा गई और उन्हें जेल भेज दिया।
1: लेकिन जेल की सलाखें भी उनकी आवाज को रोक नहीं सकी। उन्होंने जेल में रहते हुए भी कविताएं लिखी और लोगों में साहस भरते रहे।
0: उनके गीतों में प्रेम, भक्ति, देशभक्ति और क्रांति, हर भावना का सुंदर संगम मिलता है। 19 अगस्त 1976 को उनका निधन हो गया। उनकी कविताएं और विचार आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। और बहनों, एक बात और बता दूं कि इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया था।
1: उनका जीवन हमें यही सिखाता है बहनों कि अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। सच्ची कलम वही है जो समाज को नई दिशा दे और लोगों में साहस जगाए।
0: तो आज हम अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पुनः स्वागत है सखियों आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए जानते हैं शिल्पी से कि कार्यक्रम में आगे क्या सुनवाने वाली है अब वो।
1: बिल्कुल, और भाई कार्यक्रम में आगे हम बढ़ते हैं और हर दिन बहनों को सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता जिस पे कुछ न कुछ अच्छी जानकारी होती है। तो आज का विषय है बहनों की डिजिटल युग में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, और डॉक्टर देवांगी शुक्ला हैं आज खास मेहमान, सीआईपी रांची में कार्यरत हैं, और इनसे बातचीत की है हमारी रेडियो सखी मधु चौबे। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
0: सखियों, डिजिटल युग में तकनीक जहां बच्चों को नई ऊंचाइयां दे रही है, वहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने की लत, सोशल मीडिया का प्रभाव और दबाव बच्चों के मन को ऐसा प्रभावित करने लगा है कि वे आज कई मानसिक बीमारियों की गिरफ्त में आने लगे हैं। बच्चों को क्या क्या हो रहे हैं इससे नुकसान, कौन से रोग हो रहे हैं उन्हें, और कैसे पाए उन रोगों से निजात, कुछ इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश की है हमने आज की भेंट वार्ता में। आज का विषय है डिजिटल युग में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, और आज की मेहमान है डॉक्टर देवांगी शुक्ला। वर्तमान में आप सीआईपी रांची में मनोचिकित्सक हैं। नमस्कार डॉक्टर देवांगी
2: जी। नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर देवांगी। आजकल बच्चे शारीरिक खेलों से कहीं ज्यादा स्क्रीन पर वक्त बिता रहे हैं। एक मनोचिकित्सक के रूप में आप बच्चों में इसके लिए किस प्रकार के परिणाम देख रही हैं? क्या इस डिजिटल युग ने बच्चों के सोचने समझने के तरीके और उनके शुरुआती मानसिक विकास को प्रभावित किया है?
2: जी, जो मैं अपने अनुभव में देख रही हूँ उसमें सबसे पहली बात है नींद का बिगड़ना। फोन और टैबलेट की जो रोशनी होती है वो उसकी वजह से दिमाग को लगता ही नहीं है कि रात हो गई है। बच्चा देर तक जागता रहता है, सुबह उठना मुश्किल होता है, दिन भर सुस्त और चिड़चिड़ा रहता है, चीजों पर ध्यान नहीं लगा पाता है। माँ सोचती है बच्चा आलसी हो गया है, लेकिन असल में उसके नींद पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात, बच्चा मुश्किल झेलना नहीं सीखता। जब भी वो उदास होता है, जब भी मन नहीं लगता है, जब भी कोई बात बुरी लगती है फोन उठा लेता है। इससे जो सीखना है कि तकलीफ में खुद को कैसे संभाले वो नहीं हो पाता है, और यही आगे चलकर बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता है। तीसरी बात जो ये है कि ये बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है। 2 से 5 साल की जो उम्र है यह समय बहुत नाजुक होता है बच्चों के विकास के लिए। उसी उम्र में बच्चा बोलना सीखता है, दूसरों को समझना सीखता है, रिश्ते बनाना सीखता है। अगर उस उम्र में वो इंसानों से कम

0: और स्क्रीन से ज्यादा जुड़ा रहे तो यह सब धीमा पड़ जाता है, और यही कमी बाद में स्कूल में, दोस्तों में, हर जगह दिखाई देती है।
1: जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर देवांगी। अच्छा, छोटे बच्चे हों या किशोर,
0: जी
1: ज्यादातर बच्चों में सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की ललक समाती जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल पहचान की यह होड़ उनके आत्मसम्मान और स्वभाव को कितना खोखला कर रही है।
0: जी सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। जो ये एप्स हैं, इनको इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी कोई हमारी बात को पसंद करे, कोई लाइक दे, तो मन में बहुत खुशी होती है। ये जो खुशी है, ये थोड़े समय की ही होती है, लेकिन मन उस खुशी का आदी हो जाता है।
1: जी
0: बार बार बच्चे को वही खुशी चाहिए होती है। यह वैसे ही है जैसे कभी किसी चीज की लत लग जाती है, मान लीजिए नशे की, जुआ की। और जब यह लाइक नहीं मिलता है तो बच्चा टूट जाता है, मन में यही बैठ जाता है कि जब लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। यह बहुत खतरनाक सोच है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: बच्चा अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लग जाता है, अपने
1: जी
0: मन से नहीं। दूसरी बात है दूसरों से तुलना। पहले बच्चा सिर्फ गांव या मोहल्ले के बच्चों को देखता था, अब वो पूरी दुनिया की चमक दमक देखता है। एक और बात जो मैं जरूरी कहना चाहती हूँ कि लड़कियों पर इस चीज का बहुत गहरा असर होता है। फोन पर जो कॉस्मेटिक, चेहरा वगैरह दिखाया जाता है, फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, असली नहीं होता, लेकिन बच्चियां उसी को सच मान लेती हैं और खुद को उस पैमाने पर तोलने लग जाती हैं। इससे बच्चों के खाने पीने की आदतें बिगड़ने लग जाती हैं, मन में हकबक बेचैनी रहती है, खुद को कम सम आंकने लग जाती हैं, खुद के वजन को लेके, कैसे दिख रही हैं उसको लेके वो परेशान हो जाती हैं। इससे कभी कभी ईटिंग डिसऑर्डर, जिनको हम बोलते हैं, खान पान में जो कमी आती है या उसको लेके जो बच्चा परेशान रहता है, वो सब बढ़ता जाता है। सीधी बात यही है कि जिस बच्चे की अपनी पहचान दूसरों की तारीफ पर टिकी हो, वो बच्चा जीवन की असली मुश्किलों के लिए तैयार नहीं होता, और यही उसका सबसे बड़ा नुकसान है।
1: जी बिल्कुल। रील्स और शॉर्ट्स के इस दौर में बच्चों का किसी काम में ध्यान लगाने की क्षमता में लगातार कमी देखने को मिल रही है। क्या यह
0: जी
1: डिजिटल भटकाव आने वाले समय में बच्चों के धैर्य और उनकी सीखने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है क्या?
0: जी देखिए, अब ये नुकसान पहुंचा सकता नहीं है, पहुंचा रहा है, ये हम अभी देख रहे हैं। रील्स और जो शॉर्ट वीडियो होते हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, 15-20 मिनट सेकंड में हर बदलते रहते हैं, हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। और जो हम बच्चों का मन होता है, हमारा भी मन जो होता है, उसको आदत पड़ जाती है। फिर वही बच्चा जब स्कूल में जाकर बैठता है, उसको वो टीचर जब उसको 40 मिनट एक ही चीज समझा रहा होता है, तो बच्चे बोझिल होने लग जाते हैं, मन नहीं लगता है, बेचैन हो जाते हैं, बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ता है, गहराई से नहीं पढ़ पाता है। जब चीजें मुश्किल होने लग जाती हैं तो बच्चा छोड़ देता है कि ये नहीं होगा मुझसे। शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बच्चे का मन जब खाली होता है तो उसमें नई बातें, नए विचार जन्म लेते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। बच्चे
1: जी
0: अब ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब चीजें पसंद करते हैं जब वो बोर होते हैं। अगर खाली पल में अगर उसके पास फोन रहेगा तो इसके लिए जगह ही नहीं बनेगी। बच्चा देखना चाहता है, जानता है, पर वो सोचना भूल जाता है।
1: जी डॉक्टर, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर बुलिंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई बार बच्चे इनका शिकार हो जाते हैं और डर या अन्य कारणों से अपने माता-पिता से इस बारे में बात नहीं कर पाते। ऐसे में इसके भयानक दुष्परिणाम भी सुनने को मिलते हैं। एक बच्चा डिजिटल दुनिया में खुद को अकेला ना पाए, इसके लिए अभिभावक को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जब बच्चा परेशान होता है, उसको ऑनलाइन तंग किया जा रहा है, तो वो घर वालों को क्यों नहीं बताता है। सबसे पहला कारण कि फोन छिन जाने का डर होता है, घर वालों को बताएंगे, ऐसा ना हो कि वो हमसे फोन ही छीन ले हमारा, तो नहीं बताते हैं। दूसरी बात, शर्म, मुझे कोई परेशान कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे। तीसरी बात यह डर कि माँ बाप या तो समझेंगे नहीं या बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और अगर सच कहूं तो पहले कभी अगर माँ बाप ने गुस्से में जवाब दिया हो तो यह बच्चे का डर गलत भी नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि भरोसे का जो रिश्ता है वो पहले से बनाना पड़ेगा। यह तब नहीं होता जब मुसीबत आए, बच्चा जब परेशान होगा तब उस समय पे भरोसा नहीं बनता है, पहले से ही करना पड़ता है जब चीजें ठीक हो।
1: बिल्कुल
0: जैसे बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि आजकल आप क्या देख रहे हैं फोन में, किससे बात हो रही है, कोई नई बात, कोई परेशानी तो नहीं है। यह पूछताछ नहीं है, ये सिर्फ अपनापन है।
1: जी
0: जब यह
1: बिल्कुल
0: बात रोज करने की आदत हो जाएगी तो मुश्किल में भी बच्चा खुद आपके पास चला आएगा। दूसरी बात, आप बच्चे को फोन देने के पहले उसको सीधे ये बात साफ कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोई भी आपको तंग करता है, कुछ बुरा होता है, कुछ बुरा बोलता है, गलती भी हो जाती है, तो आप हमें आकर बता सकते हैं, हम पहले सुनेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, और इस बात को निभाना भी है। तीसरी चीज है कि निशान पहचानने हैं। बच्चा फोन देखकर उदास हो रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, खाने पीने में कमी आ गई है, उसके नींद में कोई दिक्कत हो रही है, बच्चा स्कूल जाने में कुछ शिकायतें करने लग गया है, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी कोई बीमारी का बहाना बना रहा है, ये सब
1: जी
0: संकेत हैं और इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है।
1: बिल्कुल। आज के समय में माता पिता दोनों ही व्यस्त जीवन जी रहे हैं डॉक्टर, ऐसे में अपने नौनिहालों को शांत करने के लिए अपने बच्चों के हाथ में स्वयं ही माता पिता मोबाइल थमा दे रहे हैं। आपकी दृष्टि में ये कहाँ तक सही है?
0: देखिए, मैं इसमें माँ बाप को गलत नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि माँ बाप भी दिन अगर दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, दिन भर की थकान होती है, काम का बोझ होता है, बच्चा रो रहा होता है, फोन देना सबसे आसान तरीका लगता है,
1: जी
0: ये हम समझते हैं। लेकिन जो बात सबसे जरूरी है यहाँ पे कि ये आसान रास्ता आगे जाकर बहुत महंगा पड़ता है।
1: जी
0: जब भी बच्चा परेशान हो और हम फोन दे, बच्चे के मन में एक बात बैठ जाती है कि जब तकलीफ हो तो फोन उठा लो, और धीरे धीरे वो खुद से मुश्किल झेलना सीख नहीं पाता,
1: जी
0: आगे चलकर उदासी में, घबराहट में, और धीरे कभी कभी बड़ी बीमारियों में बदल जाता है। डॉक्टरों की सलाह है कि 2 साल से छोटे बच्चे को फोन बिल्कुल नहीं देना है, 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें 1 घंटा से ज्यादा फोन नहीं देना है। प्रश्न
1: जी
0: ये आता है कि इसमें ये बदलाव कैसे करें। सबसे जरूरी ये है कि बच्चों को ऐसी चीजों में लगाएं, फोन के अलावा ऐसी चीजों में लगाएं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो।
1: जी
0: आप छोटे खिलौने हो सकते हैं, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग करना, कुछ बनाना, मिट्टी से ही कुछ बनाना, इन सब चीजों में इनको व्यस्त रखना जरूरी है। कभी कभी बच्चों को थोड़ा बोर भी होने दें,
1: जी
0: हर बात तुरंत बहलाना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बेचैनी झेलना भी उसको मजबूत बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें खुद की फोन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करना है। बच्चा हमें देखकर ही सीखता है, हमारे बोलने से नहीं सीखता है।
1: बिल्कुल, ये सच है डॉक्टर दिवांगी कि बच्चों को पूरी तरह से तकनीक से दूर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में एक स्वस्थ डिजिटल डाइट क्या होना चाहिए जिससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे और वे तकनीक का सही फायदा भी उठा सकें?
0: जी मधु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज के जमाने में फोन और इंटरनेट से दूर रहना नामुमकिन है। यह सीखना भी बहुत जरूरी है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, सही तरीके से, सही मात्रा में। सबसे पहले हमें ये देखना होगा बच्चा क्या देख रहा है फोन पे। पढ़ाई की चीज देख रहा है, कुछ नया सीख रहा है, वह ठीक है, बस घंटों तक अगर वीडियोज ही देख रहा है वो नुकसानदेह है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी बात, कब और कहाँ फोन नहीं देना है। कुछ छोटे छोटे हम नियम अगर घर में बना लें, खाना खाते समय फोन नहीं यूज करना है, सोने के 1 घंटा पहले फोन बंद करके रखना है, ये सब बच्चे के लिए नहीं पूरे घर पर ही लगाने पड़ेंगे, तभी बच्चा ये बात मानेगा।
1: जी
0: तीसरी बात है कि बदलाव क्या करना है। अगर बच्चा फोन देख रहा है तो उस समय बाहर खेलने में, किसी से बात करने में, हाथ से कुछ बनाने में भी उतना ही समय देना पड़ेगा।
1: जी
0: ये संतुलन जरूरी है बच्चे का फोन से दिमाग हटाने के लिए। एक और काम कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन पूरे घर का फोन बंद कर सकते हैं। उस समय कोई भी फोन नहीं यूज करेगा, माँ बाप भी नहीं करेंगे, बच्चा भी नहीं करेगा। इससे बच्चा इन्वॉल्व होगा, घर वालों के साथ उसको अपनापन महसूस होगा, और किसी को शुरू शुरू में ये चीज अजीब लग सकती है, फिर वही जो दिन है जिसमें हम फोन नहीं यूज कर रहे हैं वो सबसे अच्छा दिन बन जाएगा, क्योंकि उसी दिन घर में असली बात होती है, असली हंसी होती है।
1: अंत में सखियों को ये बताएं डॉक्टर देवांगी कि यदि उनके किसी बच्चे या किशोर के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे ही देती है, तो ऐसी स्थिति में अभिभावक के तौर पर वे किस तरह की प्रतिक्रिया दें और क्या उपाय करें?
0: जी, ये आज का सबसे जरूरी सवाल है। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ निशानियां, जैसे हम बोलते हैं 2 या 2 हफ्ते से ज्यादा बच्चा उदास रह रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है, जो किशोर है उनमें चिड़चिड़ापन उदासी से ज्यादा देखने को मिलता है। पहले जो चीजें पसंद थी उसमें मन नहीं लग रहा है, खाना कम हो गया है, नींद में बदलाव दिख रहा है, नींद कम हो गई है या हो सकता है ज्यादा सो रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, दोस्तों से मिलने का, बात करने का मन नहीं कर रहा है। और अगर बच्चा कभी यह कह दे मैं नहीं रहना चाहता, जीने का कोई मतलब नहीं है, इन सब
1: जी
0: चीजों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात आती है कि क्या करना है। पहली बात, हमें खुद को शांत रखना है। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, बस इतना कहें कि आप बोल सकते हैं कि मैंने देखा है कि तुम कुछ दिनों से उदास लग रहे हो, कुछ कहना चाहते हो, मैं हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। यही बच्चे के लिए काफी होता है। आप उसको कुछ हल ना दें, कुछ नसीहत ना दें, बस सुने, यही उसके लिए सबसे बड़ी दवा है। तीसरी बात, उसको ये ना बोले कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, इससे बच्चे को लगता है कि मेरी बात की कोई कीमत नहीं है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात है वो ये है कि डॉक्टर के पास जाने से डरना नहीं है। जिस तरीके से आप बुखार होने पे, सर्दी खांसी होने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरीके से मन की तकलीफ में मनोचिकित्सक के पास जाना उतना ही जरूरी है। जितना जल्दी आप मिलेंगे उतना ही जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। आखिरी बात जो है वो ये है कि आपको अपना भी ख्याल रखना है। माँ अगर परेशान होती है, माँ अगर तकलीफ में होती है, तो बच्चे की पूरी मदद नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल सखियों, बच्चों को हम तकनीक के उपयोग को पूर्णतः रोक तो नहीं सकते, पर कुछ उपायों के माध्यम से उसे सीमित कर सकते हैं। और डॉक्टर देवांगी शुक्ला ने आपको बताया भी कि इसके क्या नफा नुकसान हैं। आशा है आप उनकी इन बातों का लाभ अवश्य उठाएंगी। डॉक्टर देवांगी, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर सखियों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मैंने अभी सुन रही थी भेंटवार्ता, और भेंटवार्ता का विषय था डिजिटल युग में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। और आज की मेहमान थी देवांगी शुक्ला, जो सीआईपी रांची में कार्यरत हैं, और इनसे बातचीत की थी हमारी सखी मधु चौबे। तो मधु, इतनी अच्छी बातचीत के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सखियों के संग एक सुंदर सा गीत सुनते हैं।

0: भाई इस खूबसूरत गीत को सुनकर हमारी सखियों के दिल में चैन जरूर हो गया होगा। और अब बहनों हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी है खाद्य सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों की करें सुरक्षा, क्योंकि आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। बहनों मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं बनाती बल्कि खेती और खाद्य उत्पादन में भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती हैं।
1: हाँ बहनों, खेतों में लहलहाती फसलें, रंग बिरंगे फल और सुगंधित फूल के खिलने में भी इन छोटी सी मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है।
0: वे फूलों से पराग एक पौधे से दूसरे पौधों तक पहुँचाती है जिसे परागण कहा जाता है। इस प्रक्रिया से फलों, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन भी बढ़ता है।
1: दुनिया की लगभग एक तिहाई खाद्य फसलें मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर रहता है बहनों। यदि ये ना रहें तो खेती और खाद्य सुरक्षा दोनों पर खतरा बढ़ सकता है।
0: तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मधु, लेकिन अफसोस की बात है कि इन दिनों मधुमक्खियों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई छटाई, जिसके कारण इनका खतरा बढ़ गया है।
1: बहनों यदि मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी तो हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। तो आइए आज मधुमक्खी दिवस पर संकल्प लें कि मधुमक्खियों की रक्षा करेंगे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे
0: और बहनों खूब फलदार और छायादार वृक्ष लगाएंगे। साथ ही उनके छत्तों को, यानी कि मधुमक्खियों के छत्तों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
1: अपने बगीचे में रासायनिक छिड़काव भी नहीं करेंगे,
0: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को अपनाएंगे। तो बहनों अब हमारे कार्यक्रम का जो वक्त है धीरे धीरे संपन्न होने को है, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।
1: तो चलते चलते सखियों को बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी
0: और कार्यक्रम के सफर में आपकी दो हम सफर थी, मैं शिल्पी और
1: मैं मधु। तो दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओ, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओ, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं, की धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओ, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओ, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओ, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
2: जी,
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
0: CIET NCERT presents the series Singing the Poem Under the Sea.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
2: क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: तो राजू बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा,
2: शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
3: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
3: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
3: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
3: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
3: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
3: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
3: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
3: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
3: जी तेरा।
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
0: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
2: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
3: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
2: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
2: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
2: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार। अनुरंजनी इसके अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत आप सुनिएगा 1:20 पर। 1:45 पर आप सुनिएगा सुगम संगीत के अंतर्गत चंद गजलें। 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, जय भारती 2:30 पर, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार, 3 बजे आप सुनिएगा नॉन स्टॉप अंताक्षरी, 3:30 पर रांची मेलोडीज, शाम 4 बजे मुख्य समाचार।

0: कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानक और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart, Ahn Ji.

0: University and the UN Peacekeeping Corporation. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle launched precision guided missile, marking a significant for the country. Air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. The missile was developed by Research Center Imarat, Hyderabad, in collaboration with other DRDO laboratories. Developed entirely within the country, the project highlights the growing strength of India's domestic defense manufacturing ecosystem with the participation of MSMEs and private industries under the Atmanirbhar Bharat initiative. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict, and international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO, and BRICS. The meeting came shortly after U.S. President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. India Meteorological Department, or IMD, has issued orange alert for heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh today. Punjab and Haryana are reeling under severe heat wave conditions with maximum temperatures ranging between 40 and 47 degrees Celsius across both states. The Union Territory of Chandigarh is also experiencing intense heat wave conditions. IMD has said that heat wave conditions are also expected over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Southwest Bihar, Chhattisgarh, Telangana, coastal Andhra Pradesh, Yanam, Marathwada and Odisha for the next 2 days. Meanwhile, heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahi and Lakshadweep is expected till tomorrow. Benchmark domestic equity indices paired with their early losses and traded on a flat note with a slight negative bias during the afternoon session today. The Sensex dropped 59 points to 75,142, while the Nifty dipped 12 points to 23,606 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया नई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ, कहा यात्रियों के सफर को अधिक सुगम और आरामदायक बनाना सरकार की प्राथमिकता। ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कड़ा रुख, जिन विभागों में हुई फर्जी निकासी वहां से डीडीओ को हटाने के निर्देश। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल, राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग टूर्नामेंट शुरू, देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। और अब समाचार विस्तार से। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए यात्री अनुकूल कदमों की शुरुआत की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट पर नवनिर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हो रही इन पहलों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना है।
2: हमारे प्रयास ये है केंद्र सरकार के कि हर राज्य में जो राजधानी में जो एयरपोर्ट है वो सबसे बढ़िया रहे, सारे बाकी राज्यों से हो या बाकी बड़े शहरों से जो वो सबसे कनेक्टेड रहे, तो उसके ऊपर जरूर हमारा प्रयास भी रहेगा और हमारे तरह से सपोर्ट भी रहेगा। यात्रियों में एक अच्छा रेस्पॉन्स था, अच्छी मांग भी रही है ये उड़ान।

0: यात्री कैफे के तहत। उड़ान यात्री कैफे का मकसद यह है कि कम दाम में एयरपोर्ट पे भी खान पान की व्यवस्था हो।
1: राज्य में सामने आए करोड़ों रुपए के ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन विभागों में फर्जी तरीके से सरकारी राशि की निकासी हुई है वहां से डीडीओ को तुरंत हटाया जाए। श्री किशोर ने इस सिलसिले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो महासचिव मिथिलेश ठाकुर द्वारा भारत का खंडित नक्शा जारी करने पर हमला बोला है। मरांडी ने इसे देश की अखंडता पर प्रहार बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सार्वजनिक माफी की भी मांग की। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कल रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य राज्य में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी गतिविधियों को और प्रभावी बनाना है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बेहतर गति मिल सके। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो प्रखंड में सिंगार सराय से कैरो समेत 3 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि मांडर विधानसभा में विकास की यह यात्रा जारी रहेगी और सभी वायदे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदाचार को एक दीपक बताते हुए कहा है कि यह पूरे समाज को प्रकाशित करता है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोग इसी आदर्श के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने आचरण को संतुलित बनाने के लिए शास्त्रों के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरिक के साथ आपसी बैठक की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान लिज्जत पापड़ उद्योग की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विकेंद्रित उत्पादन का यह मॉडल महिलाओं को घर बैठे आत्मनिर्भर बनाता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद में अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए उपायुक्त और एसएसपी ने 112 पेट्रोलिंग बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सायरन, ब्लिंकर और जीपीएस से लैस इन बाइकों की सीधी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी, जिससे शहर के तंग इलाकों में भी पुलिस रिस्पांस टाइम बेहतर होगा।
3: धनबाद पुलिस के सभी थानों को 45 स्टेट ऑफ दी नई बाइक जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है वो मुहैया कराया गया है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है, जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे फोर व्हीलर नहीं जा पाते हैं, और रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 75,157 जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपये प्रति किलो है। थाईलैंड में आयोजित थर्ड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमरम का नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में सम्मानित किया। उन्होंने देवासी को आधुनिक शूटिंग किट देने की घोषणा की है।
4: बच्ची एक होनहार है, चाहती है आगे बढ़ना, तो हमने इनसे कहा है कि तुम इतना चिंता मत करो, वो टोटल लिस्ट हमको बना करके दे दो, जहाँ कहीं से भी होगा जैसे भी होगा हम उस सारे शूटिंग की जो भी सामग्री होगी उतना हम व्यवस्था कर देंगे।
1: हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में चौथी ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस मुकाबले में विदेश सहित देश के 13 राज्यों से लगभग 272 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनके बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया नई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ, कहा यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना सरकार की प्राथमिकता। ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कड़ा रुख, जिन विभागों में हुई फर्जी निकासी वहां से डीडीओ को हटाने के निर्देश। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल, राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग टूर्नामेंट शुरू, देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं शोभा गुड्डू।

शोभा गुट्टू के गाए इस ठुमरी के साथ ही अनुरंजनी अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत चंद गजलें। पहले सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़।

0: Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, led several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenge. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदेशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियान पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री अन यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। रक्षा विश्वविद्यालय और शांति दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित एक पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मादक इसने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
4: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी दी अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल @TIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
6: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारण, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47

0: 3.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त दक्षिण अफ्रीका बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार में 24 अंक की गिरावट के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL PGM V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का जय भारती में। सीमाओं के प्रहरी हमारे देश के वीर जवानों को समर्पित ये कार्यक्रम है। हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: Sena.
1: हाजिर है कार्यक्रम लेकर जय भारती, और इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ मीनाक्षी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हिना फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आइए अब सुनते हैं गौहर कानपुरी का लिखा हुआ ये गीत। पप्पी लाहिरी का संगीत है, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम जख्मी।

0: और इस गाने के साथ ही जय भारती अब यहीं संपन्न होता है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने युवाओं को तकनीक आधारित कौशल से जोड़ने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से दक्ष युवा भविष्य में केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में कहा कि मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण दुनिया की स्थिति सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेट्रोलियम समेत अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है। सभी देश हित में प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहे हैं। श्री सेठ ने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में लिए गए निर्णयों के साथ खड़ा है।
1: दुनिया की स्थिति है किसे छुपाने, भारत में तो तेल क्यों है नहीं, तेल के कोई तो वही है। क्रूड ऑयल का दाम आसमान छू रहा है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल भारत। मैं भी 10 दिनों से स्कूटी में चल रहा हूँ, शहर में बाहर जाता हूँ तो एक गाड़ी में जाता हूँ, तो जो भी एक एक लीटर दो दो लीटर भी पेट्रोल डीजल बचा है, देश का पैसा बच रहा है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गांव का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गांव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। ग्रामीणों ने पेयजल और बिजली की समस्या प्रमुखता से उठाई, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पतरातो सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद कार्यालय में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है और कर्मी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। अक्सर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी को लेकर मरीजों के परिजन संपर्क करते हैं। ऐसे में जिला परिषद अस्पताल प्रबंध के सहयोग से जरूरतमंदों तक समय पर रक्त पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
2: जिला परिषद में पहली बार ब्लड कैंप लगाया गया है। हर 15 डेज में पुलिस में बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो इन बच्चों का जन्म से ही इनकी जर्नी बहुत मुश्किल होती है। और अगर हम लोग कैंप नहीं लगाएंगे, हम लोग खुद ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, तो अस्पताल में ब्लड आएगा कहाँ से, और इन बच्चों की मुश्किलें कम कैसी होंगी। और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें।
0: रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। संघ ने सभी संबंधित खिलाड़ियों, संस्थानों और इकाइयों से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब वक्त है नॉनस्टॉप अंताक्षरी का।

श्रोताओं, अंताक्षरी को भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। यह खेल आमतौर पर परिवार के समारोहों, शादी ब्याह या दोस्तों के साथ मिलकर खेला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंताक्षरी ने न केवल मनोरंजन का एक साधन प्रदान किया है, बल्कि लोगों को एक साथ लाने में भी मदद की है। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप अंताक्षरी, और हमारा अगला अक्षर अब है क।

0: नॉन स्टॉप अंताक्षरी में आज इतना ही।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप अंताक्षरी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

ये पहला गाना पेश है कठपुतली फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, शंकर जयकिशन का संगीत है और बोल हैं शैलेंद्र के।

आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज। अगला गाना है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल हैं, जीएस कोहली का संगीत, फिल्म का नाम शिकारी।

उत्सव फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में वसंत देव ने इस गीत को लिखा और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और आइए अब सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है मशाल फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत और जावेद अख्तर के हैं बोल।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गाँव का दौरा किया। उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गांव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। राज्य के पतरातूत सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जाँच का निर्देश दिया गया है। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। भेंटवार्ता का विषय है भारत की जनगणना 2027। भेंटवार्ताकार हैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता, संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड गृह मंत्रालय, भारत सरकार, और मुरारी मोहन, सहायक निदेशक। भेंट करता है कमलेश कुमार मिश्र और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
2: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। आज का कार्यक्रम कुछ खास है। खास इसलिए कि जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमें गौरवान्वित करता है। एक ऐसी प्रक्रिया की बात करने जा रहे हैं जिसमें हमें और आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाली है। विषय है भारत की जनगणना 2027। जब जनगणना की बात करते हैं तो बात विकास के तस्वीर की होती है, बात उन प्रयासों की होती है जिसने देश को बदला है, बात सड़कों की होती है, बात गांव के विकास की होती है, बात ये भी होती है कि कहां पर क्या कमी रह गई और अब इस कमी को कैसे पूरा करना है, बात सरकार की उन योजनाओं की होती है कि जिन तक लाभ पहुंचना है वो लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जनगणना वही महत्वपूर्ण विषय है। जनगणना 2027 विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया, और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। खास बात यह है कि ये नेशनल ट्रेनर हैं। जब भारत की जनगणना 2027 की बात करते हैं तो पूरे देश में सिर्फ 100 नेशनल ट्रेनर्स हैं, उनमें से 2 नेशनल ट्रेनर हमारे साथ हैं जो झारखंड से हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता, ये ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड गृह मंत्रालय भारत सरकार में, और मुरारी मोहन जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये भी नेशनल ट्रेनर हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं सत्येंद्र सर और मुरारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
3: धन्यवाद सर, हमें भी खुशी हुई कि इस राष्ट्रीय कार्य के बारे में आप हमारे साथ आज सम्मिलित हो रहे हैं और लोगों को कुछ विशेष बताने का प्रयास कर रहे हैं।
4: धन्यवाद महोदय।
2: सत्येंद्र सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्यों ये जनगणना जरूरी है?
3: जनगणना एक राष्ट्रीय विषय है और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें वो आंकड़े देते हैं जो इस देश की नींव को मजबूत करेगा, भविष्य को उज्जवल बनाएगा और योजनाओं को सफल करेगा। जैसे आप आम तौर की भाषा में अगर देखते हैं, हमारे घर में माताएं अगर रोटी बनाती है, वो रसोई घर में है और हम उनसे बोल देते हैं कि भोजन बनाना है,
4: अगर उसको संख्या नहीं पता है कि हमारे घर में कितने लोग हैं या कितने मेहमान आ गए हैं, तो वो अपने हिसाब से बनाएगी। तो वैसी स्थिति में चाहे तो भोजन ज्यादा लोगों का बन जाएगा या कम बनेगा। ज्यादा बनेगा तो बर्बाद होने की संभावना है, कम बनेगा तो कुछ लोग भूखे रह जाएंगे। तो उसी तरह ये आंकड़े जो हैं सेंसस के, ये पूरे राष्ट्र की नीति को निर्धारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
2: आज जब जनगणना की शुरुआत हुई सर, जनगणना 2027 ये चल रहा है 2026, थोड़ा सा इसे क्लेरिफाई करेंगे।
4: देखिए, जनगणना जो भारत की है ये दो चरणों में होता है। तो जनगणना हम लोग मनुष्य का करते हैं, तो मनुष्य किसी घर में रहता है, निवास करता है, तो उसको गिनने के लिए उन घरों को चिन्हित करना सबसे पहला काम है। तो इस देश में जो अधिसूचना जारी हुई, तो अप्रैल से लेकर 2026 के सितंबर तक किसी भी 30 दिन को कोई भी राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार चुन सकता है। इस अवधि में 30 दिनों में जनगणना का कार्य प्रगणक द्वारा घर घर जा किया जाएगा, और उसके पहले सेल्फ इन्यूमरेशन की भी कार्रवाई की गई।
2: आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल है, और उन्हीं सवालों के जवाब को हम तलाशेंगे। इसलिए हमारे साथ दो नेशनल ट्रेनर्स हैं, और गर्व की बात है सर, ये जब गर्व की बात हम बोलते हैं, क्यों ये गर्व की बात है कि जब आप जनगणना में शामिल हो रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, सर ने भी इस बात को कहा था कि हमें ये गौरवान्वित करता है, क्यों सर?
5: यह गर्व की विषय है, क्योंकि हम देश के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम सीमा पे खड़े होकर के ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। देश के अंदर रह करके, कहीं भी किसी भी पद पर रह करके भी हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमें गौरव महसूस हो। तो जनगणना भी एक इस तरह का कार्य है, जिसमें मुझे मौका मिला कि पूरे झारखंड में राष्ट्रीय प्रशिक्षक के तौर पर सभी मास्टर प्रशिक्षक को तैयार करना, उसके बाद वो कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने नीचे के लोगों को, नीचे के अधिकारियों को, उसकी मॉनिटरिंग करना, ताकि प्रशिक्षण अत्यंत ही अच्छा हो, जो कि हमारे आगे के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक है।
2: गुप्ता सर, मैं अब कार्यक्रम में आगे बढ़ूं और उन तमाम सवालों को लूं जिसपे लोग शायद उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो गोपनीयता से जुड़े हों, या फिर उन्हें लगता है कि जो सेल्फ एनुमरेशन हुआ अगर वो छूट गया तो फिर क्या होगा, या जो होम एनुमरेशन होने जा रहा है उसमें क्या होना है। तो इन सब चीजों से बढ़ने से पहले एक और सवाल लेना चाहूंगा कि हमने पढ़ा, जब हम भारत की जनगणना 2027 की पुस्तिका को देखते हैं, तो सबसे पहले ही लिखा है कि देश के प्रगति का आधार,
4: ये देश बहुत बड़ा है हमारा भारत देश, और विभिन्न भाषाई लोग यहां रहते हैं, उनके आहार व्यवहार, उनका बोली, सब कुछ अलग है। तो उनको एक सूत्र में बांधना, उनके अंदर कोई भाव दूसरा नहीं आया जाए इस राष्ट्र का, क्योंकि सरकार की मंशा रहती है कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। तो जब तक सरकार को यह नहीं पता चलेगा कि हमारे किस प्रदेश के, किस राज्य के, किस गांव के, किस शहर के, किस टोले के व्यक्ति को क्या हो सकता है, तब तक वो योजनाओं को एक दृढ़ योजना के रूप में लागू नहीं कर सकती है। इसलिए इस जो जनगणना के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, इसमें 34 कॉलम और 33 प्रश्न है, उनको इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया, इस तरह से तैयार किया गया है कि सरकार की योजनाओं के बारे में वो एक

0: अपने मोबाइल पे ही 100 जनगणना कर सकते हैं जी। इसके बारे में बताएं। हालांकि जो 100 जनगणना की तारीख थी वो 1 मई से 15 मई तक थी और वो समाप्त हो, बट ये पहली बार हुआ।
1: देखिए ये तक की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। यह डिजिटली मोड में हो रहा है। सारी जनगणना की प्रक्रिया को CMS पोर्टल एक है, उसके माध्यम से किया जाएगा। और जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अपना जब आंकड़ा देते हैं या कुछ करते हैं, हम जब सम्मिलित होते हैं किसी कार्य में, सहभागी बनते हैं, तो हम सामने वाले जो हमारे से काम करवाएंगे उससे ज्यादा हम अपनी जानकारी स्वयं दे सकते हैं। इसीलिए स्वगणना की बात हुई।
0: मुरारी सर, इसमें आपसे एक जानकारी मैं लेना चाहूंगा। जैसे स्वजनगणना जब लोग भर रहे थे, कई इस तरह के सवाल आए या हमने कई लोगों से जब बात की तो कुछ ऐसी बातें भी आ रही थी कि यार ये चीज को सही भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये डिटेल दे रहे हैं, ये डिटेल क्यों लिया जा रहा है जनगणना में, इस तरह के सवाल आ रहे थे। तो इस पे क्या एक क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल। इसमें जैसे केवल मकान और मकान में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उसकी ही नहीं, कई प्रकार के जैसे उनके पास क्या क्या और है, जैसे रेडियो है या नहीं, टीवी है या नहीं, उनके पास मोबाइल फोन है तो कैसा है, लैंडलाइन है या स्मार्टफोन है या दोनों है, या उनके पास लैपटॉप है या नहीं, उनके पास 2-व्हीलर है या नहीं, उनके पास 4-व्हीलर है या नहीं, और सबसे अंतिम में एक प्रश्न है कि प्रमुख खाद्यान्न वो कौन सा उपयोग करते हैं। तो लोगों में बहुत तरह की भ्रांति होती है।
0: इतनी डिटेल्स क्यों मैं दूं?
2: हाँ बिल्कुल, लोग ऐसा सोचते हैं कि इतनी जानकारी मैं क्यों दूं, और इस तरह का उनको लगता है कि ये सारी जानकारी अगर मैं बता दूंगा कि मेरे पास 4-व्हीलर है तो हो सकता है कि इनकम टैक्स का रिटर्न मुझे भरना पड़े जो अभी तक नहीं भर रहा था, या जो भर भी रहे हैं तो उनको लगता है कि कहीं फिर मेरा जो है इनकम टैक्स बढ़ ना जाए। तो ये सब सारी चीजें उनको लगता है कि मैं इतना क्यों दूं इतना डिटेल में। लेकिन इन सारी जानकारियों का, इन सारे आंकड़ों का भारत देश के विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों द्वारा यह तैयार किया जाता है कि उनको कौन से आंकड़े चाहिए, तब जाकर के यह पूरी प्रश्नावली तैयार की जाती है और भारत के राजपत्र में पहले यह प्रकाशित होता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के, झारखंड राज्य के भी राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया है कि हमारे मकान सूचीकरण वाले भाग में कौन कौन से प्रश्न शामिल होंगे। और इसमें मैं यह भी जनता को बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी आंकड़े हैं, जो भी जानकारियां ली जा रही है, ये गोपनीय है। भारत की जनगणना की का जो एक्ट है, भारत 1948 का, उसके धारा 15 के अंतर्गत यह गोपनीय है। इसे किसी अन्य व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति का आंकड़ा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। और जो यह प्रकाशित भी होते हैं तो पूरे गाँव का या पूरे शहर का एक टेबल के रूप में होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित नहीं किए जाते। अतः किसी एक व्यक्ति का जो है, जो भी जानकारी ली जा रही है, वह गोपनीय हो।
0: जो सवाल उनके दिमाग में चल रहा था कि ऐसा करेंगे तो मेरी प्रॉपर्टी पता चली जाएगी या मुझे आगे दिक्कत हो जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल, यह एक भ्रम है और प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है कि वो अपनी पूरी जानकारी सही सही दें। और यह जो है एक कानूनी बाध्यता भी है कि उन्हें अपनी जानकारी जो है, जो वो सही सही जनगणना में देनी है।
0: आज हम अपने श्रोताओं को बता दें, कार्यक्रम बढ़ते कदम में हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना 2027 की, और दो विशेष मेहमान हमारे साथ में है। सतेंद्र सर हमारे साथ में है, मुरारी सर हमारे साथ में, नेशनल ट्रेनर है। भारत में 100 अभी नेशनल ट्रेनर है इस जनगणना 27 की, उनमें से ये दो है झारखंड से। एक बहुत बड़ी बात इन दोनों से बात करके समझ में आ रही है और हम सबको ये समझना होगा, जब जनगणना की बात करते हैं तो हमें और आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे और आपके मन में ही ये सवाल होता है कि आज इस गांव में सड़क क्यों नहीं है, आज उसका मकान पक्का क्यों नहीं है, वहां पे बिजली क्यों नहीं पहुंची। तो इन सब सवालों के क्यों का जवाब इस जनगणना में है, इस जनगणना 2027 में है। सर, कि जब जनगणना की हम बात करते हैं, अब आपने बताया कि हाउस होल्ड्स, तो एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप जब कहीं पे जनगणना के लिए जा रहे हैं तो परिवार किसे मान रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में हम देखते हैं कि एक ही परिवार में 3 भाई हैं और 3 भाई अलग अलग रह रहे हैं। कैसे आप हाउस होल्ड्स काउंट करते हैं, परिवार कैसे काउंट करते हैं?
1: देखिए, परिवार की परिभाषा है कि जो साथ में रहते हैं, चूल्हे से हम लोग इसको काउंट करते हैं। एक चूल्हे पर रहने वाले, खाने वाले, भोजन पकने वाला जो खा रहे हैं, सामान्यतः उनको एक परिवार माना जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो भोजन साथ पका भी रहे हैं। अगर स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि बाहर से मंगा कर वो टिफिन या किसी और माध्यम से खा रहे हैं, लेकिन वो हमको, ये इंटरव्यू बेस्ड सारा कार्यक्रम है, वो बताते हैं कि नहीं, हमारा ये परिवार है, हमारा ये नौकर भी हमारे साथ रहकर खाना खा रहा है, ये हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ रह खा रहा है, और इंटरव्यू बेस्ड के आधार पर वो उसको परिवार संज्ञा दे रहे हैं, उसको सहयोगी मान रहे हैं, तो हम लोग उसको परिवार में कंसिडर करेंगे। इसमें घर का जो

0: किया है, जो आपको जानकारी सूचना दे रहा है, उसका जो बात है वो महत्वपूर्ण रखता है, वो उसको किस तरह से डील करता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुखिया के साथ वो रह रहा है लेकिन वो किसी दूसरे चूल्हे पर खा रहा है तो अलग परिवार माना जाएगा। आपने कहा कि तीन भाई रह रहे हैं, तीनों का चूल्हा अगर एक है
1: तो एक परिवार,
0: तो एक परिवार होगा, और अगर अलग अलग चूल्हा है तो अलग परिवार माना जाएगा।
2: मुरारी सर, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअली एक सर ये जानकारी लोग समझ पाएंगे कि हाँ कैसे परिवार को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग हमेशा इसमें, हम लोग किसी भी जगह पे देखते हैं कि जब राशन के लिए भी फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पे लिखा था मुखिया का नाम, मेन मुखिया है, फिर तो चीजें आ गई। इस पे भी चीजें देख रहे हैं कि वो मुखिया क्या जानकारी दे रहा है, ये मुखिया का रोल समझाएं।
3: परिवार का मुखिया सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि परिवार का मुखिया कौन है। तो परिवार का मुखिया कौन हो सकता है? वह व्यक्ति जो कि डे टू डे सारे डिसीजन ले रहे हो, परिवार से संबंधित सारा निर्णय वो ले रहा है और परिवार उसको अपना मुखिया मानता है। जरूरी नहीं है कि घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य ही परिवार का मुखिया हो, यह भी जरूरी नहीं है कि पुरुष सदस्य मुखिया हो, महिला भी सदस्य है वो भी मुखिया हो सकती है। और मुखिया जो है जो सारे डिसीजन ले रहा है और परिवार जिसको अपना मुखिया मान रही है वही मुखिया उसी को मुखिया मानेंगे।
2: यानी ये भी सर ये समझने वाली बात है क्योंकि अक्सर ये चीजें आती हैं, तो घर का मुखिया वही है जो घर का निर्णय ले रहा है,
0: परिवार जिसको मानता देता हो ये हमारा मुखिया है वही मुखिया है।
2: एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे दिमाग में है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, 15 मई को सेल्फ इनुमरेशन की तारीख खत्म हो गई, 16 से आपका होम इनुमरेशन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग जो अभी भी, अब जब तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं शायद उनके घर पे लोग नहीं गए, अभी तक होम इनुमरेशन के लोग वहां नहीं पहुंचे, तो उनके दिमाग में, अरे मेरा तो सेल्फ इनुमरेशन छूट गया, तो हम क्या इस जनगणना से बाहर हो गए?
0: बिल्कुल नहीं छूटे हैं वो, क्योंकि यह उनको अपनी सहभागिता बनाने के लिए सरकार ने सोचा, क्योंकि 16वीं जनगणना है, इसके पूर्व कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं था, इस बार सभी जुड़े हैं। और अगर वो छूट गए थे तो हमने जो 16 तारीख से, 16 मई से जो प्रारंभ हुआ है, 14 जून तक के मध्य में होना है, 30 दिनों का झारखंड सरकार की यदि सूचना के अनुसार कार्य होना है, तो 16, 17, 18 को जो हम लोगों का ये समय बीत गया है उसमें प्रत्येक प्रगणक और सुपरवाइजर को अपने क्षेत्र का पहचान करना था, उसके बाद घरों को नंबर देना था, एक नजरी नक्शा बनाना था, उसके बाद वो अभी जा रहे हैं। जैसे आज ये 20 मई की तिथि है तो ये 14 जून तक हमारी ये प्रक्रिया चलेगी, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और छूट गए हैं तो उनकी सभी जो 34 कॉलम है और 33 प्रश्न है उनसे संबंधित आंकड़े जो नियुक्त किए गए हैं प्रगणक वो जाकर पूछेंगे, इसमें कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2: इसका मतलब ये हुआ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आपने सेल्फ इनुमरेशन नहीं किया तो जो होम इनुमरेशन में एनुमरेटर आपके पास आ रहे हैं उन्हें आप सही सही जानकारी दे और उस प्रक्रिया में आप फिर से शामिल हो जाएंगे। मुरारी सर, मैं जब वो प्रश्नावली को देख रहा हूँ और उसमें जो प्रश्न संख्या 15 है वो बोलता है कि परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो ये आप कैसे तय करते हैं? क्योंकि आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रह रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा शादी किए हैं।
3: अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं और वो बताते हैं कि नहीं हम वैवाहिक दंपति के रूप में रह रहे हैं और वो संख्या बताते हैं, तो हमारे प्रगणक जो है, चूंकि यह इंटरव्यू बेस्ड है तो वो उसको दर्ज कर लेते हैं। अच्छा, जैसे बहुपत्नी है, एक से ज्यादा पत्नियां अगर हैं तब विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी होगी, यह प्रश्न लोग पूछते हैं। तो अगर दो पत्नियां हैं और पति एक है तब विवाहित दंपतियों की संख्या 2 होगी। इसके उल्टा में अगर हम देखें कि अगर पुरुष 2 हैं और महिला 1 है तो वैसा परिस्थिति में विवाहित दंपति की संख्या 1 ही होगी।
2: यानी महिला 2 है तो 2 वैवाहिक जोड़ा काउंट होगा और पुरुष अगर 2 है तो 1 काउंट होगा। तो ये सवाल आते हैं और आपको वो जानकारियां वहां पे शामिल करनी पड़ती है।
3: हाँ बिल्कुल, और हमारे जो प्रगणक है वो अभी जो समय चल रहा है इसमें घर घर जा रहे हैं और सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो जहाँ पे वो उनसे भी, हमारे प्रगणक से भी प्रश्न किया जाता है कि क्यों पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न, तो हम लोगों ने उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण मुहैया करवाया है कि वो इन फील्ड में आने वाली जो सारे प्रश्न है या किस तरह से कार्य करना है वो उसमें सक्षम होते हैं।
2: एज अ ट्रेनर, जब आप, मैं तो देख रहा हूँ, हम अपने श्रोताओं को बताएं कि जब हमने ये बात कही कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है तो इसमें लगभग 20 से 30 लाख कर्मचारी जो है वो शामिल है, कोई पदाधिकारी है, कोई अधिकारी है, इस जनगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और झारखंड की बात करें तो 70,000 से ज्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। आप दोनों नेशनल ट्रेनर हैं, जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे और ये जो 70,000 लोग, 70,000 से अधिक लोगों को आपने ट्रेन किया,

0: उनके सवाल किस तरह के थे?
1: देखिए, इसमें सामान्यतः जो शिक्षक या क्लर्क लेवल के लोग थे वह जानना चाह रहे थे कि सर ये प्रश्न क्यों, जो ये प्रश्न 33 प्रश्न है, क्योंकि ये एक अंतराल हो गया 16 साल के बाद ये हो रहा है लगभग, तो जो जानकार लोग थे जो पिछले बार जनगणना किए थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, नए नए लोग थे उनके प्रश्न कई प्रश्न थे, तो उनको बताया गया कि जैसे एक छोटा सा ही प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो वह सिस्टम देखना है कि सरकारी योजना में कहाँ जुड़ा हुआ है। उस प्रश्न का जो हमको उत्तर देना है कि बंद नाली से जुड़ा हुआ है या खुली नाली से जुड़ा हुआ है या कोई नाली सिस्टम नहीं है, इनका आंकड़ा अगर आएगा तो सरकार योजनाएं बनाएंगी। जैसे मकान की स्थिति ही है, हम लोग फर्श का मटेरियल, छत का और दीवालों का जो मटेरियल को हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो इससे सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है कि मकान कौन किस तरह का बना हुआ है, जर्जर है या रहने योग्य है या किस तरह का है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न उनके अंदर बहुत सारे कौतूहल थे कि टीवी ही क्यों, रेडियो ही क्यों, तो जितने भी प्रश्न तैयार होते हैं अलग अलग मंत्रालय से, प्रसार भारती से, तो जल शक्ति मंत्रालय से, अलग अलग विभाग अपना अपना अलग अलग मंत्रालय करता है, लेकिन सबका मूल यह विषय है कि देश की योजनाओं को हम लोग अच्छे तरीके से निर्माण कर पाए, तो उनके इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने उनके कौतूहल को हम लोग शांत किया, और ये जो रचना थी ट्रेनिंग की ये बहुत वेल फुल प्रूफ्ड थी। नेशनल ट्रेनर के नीचे मास्टर ट्रेनर थे, झारखंड में 56 मास्टर ट्रेनर थे, और उसके बाद वो मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित होने के बाद फील्ड ट्रेनर को दिए, और ये 56 लोग जो थे ये सारे अलग अलग जिलों के और हमारे निदेशालय के थे, तो इन्होंने फील्ड ट्रेनर को ट्रेन किया और फिर अपने जाकर इनोमरेटर और सुपरवाइजर को ट्रेन किए। जैसे आप देखेंगे कि 1276 यहाँ फील्ड ट्रेनर की संख्या थी, और प्रगणकों की संख्या 61,042 के लगभग में थी, और पर्यवेक्षक जो हर 6 इनोमरेटर के कार्य का एक पर्यवेक्षण करेंगे उनकी संख्या 10,386 की थी। पूरे देश में लगभग 32 से 35 लाख लोग इस पूरी कार्रवाई को करेंगे, जो कई देशों की आबादी से भी बड़ा है।
0: मैं आज कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ते कदम कार्यक्रम के तमाम श्रोताओं को और सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हमें अफवाहों पर नहीं जाना है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम कुछ भी नहीं सोच सकते, हमें देश हित में इस जनगणना में भाग लेना है, अपनी जानकारी देनी है, और एक पल मिला है। दूसरा सर बुराई सर आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की जनगणना होती है तो लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इसमें किसी तरह के OTP आएंगे या कुछ चीजें आएंगी, क्या कुछ पूछेंगे, थोड़ा आप इसको क्लेरिफाई करें ताकि जब किसी कोई होम इनोग्रेशन में जाए तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, और वो कैसे पहचाने कि ये जो वहां पे गया है वो ऑथेंटिक है, ये अधिकारी ऑथेंटिक है, ये जनगणना के लिए आए हैं। सो ये दोनों चीजों का जवाब आप हमारे श्रोताओं के लिए दें।
2: जनगणना के लिए जो भी प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त है उनको एक आई कार्ड की व्यवस्था है, जो उनके चार्ज अधिकारी जो सामान्य तौर पर BDO होते हैं, नगर के प्रशासक होते हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया और उनका उसमें मुहर भी लगा हुआ रहेगा, वो आई कार्ड वो लगा करके जाएंगे डोर टू डोर, तो उससे उनकी पहचान होगी कि हाँ यही प्रगणक है हमारे क्षेत्र का।
0: क्या कोई OTP जैसी चीजें भी होंगी कि वो बोलेंगे कि हाँ आपको नंबर देना है, OTP आएगा, फिर सवाल का जवाब, ऐसा कुछ होना है या किस तरह की प्रक्रिया होगी?
2: इसमें कोई भी OTP नहीं आएगा, केवल हमारे प्रगणक उनसे मोबाइल नंबर एक लेंगे, सबसे अंतिम वही सूचना है जो कि वो दर्ज करेंगे, और वह जो मोबाइल नंबर होगा केवल जनगणना प्रयोजन से ही उसका उपयोग किया जा सकेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी OTP नहीं आएगा। और मेरा अपील है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई OTP मांगता है तो उसे वो नहीं देना है।
0: गुप्ता सर,
1: साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह का न OTP देना है, न किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दिखलाने की जरूरत है, न ही किसी तरह का QR कोड स्कैन करने की जरूरत है। सिर्फ जो सेल्फ इनुमरेशन किए हैं, स्वगणना किए हैं, उनको अपनी ACID बतानी है, बाकी कोई अभिलेख नहीं देना है, ना OTP कोई मांगे, तो ऐसा होना नहीं।
0: होम इनुमरेटर आपके घर आते हैं, वो आपसे ये जो 33 सवाल है वो सवाल आपसे पूछेंगे, आपको जवाब करना है, किसी तरह की कोई OTP नहीं, कोई स्कैन नहीं करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आपने सेल्फ इनुमरेशन पूरा किया है तो उसमें जो ID आपने जनरेट की थी वो ID आपसे पूछा जाएगा। सर झारखंड की बात करें, सबसे इस बार की जो सबसे विशिष्ट चीज थी कि इस बार जनगणना को डिजिटली जोड़ा गया, पहली बार स्वगणना किया गया, कैसा रिस्पांस मिला सर?
1: बहुत अच्छा इस रिस्पांस रहा, इसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, पूरे झारखंड में जो 24 जिले हैं और 264 प्रखंड है, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी स्वगणना स्वयं की, और इसमें रांची, जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम है और हजारीबाग, इनके इन तीन जिलों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इससे एक और आंकड़ा आता है कि हमारा जो झारखंड है ये मोबाइल इंटरनेट और जागरूकता के मामले में भी काफी ऊपर है।
0: फिर यहाँ पे एक चीज जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, वो नेट का यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या?
1: ऐसे लोग भी अपने ही लोग हैं और उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके तक भी पहुंच रही है, जो दूसरे चरण का जो कार्यक्रम अभी चल ही रहा है 14 जून तक जो चलेगा, उसमें उनको हम लोग साथ लेकर चलेंगे, उनको भी छोड़ेंगे नहीं। और हो सकता है कि किसी कारण परिस्थिति से वो इन सभी चीजों का उपयोग नहीं कर रहे तकनीक का, लेकिन वो भी हमारे अपने ही है।
0: सर, कोई स्वजनगणना नहीं कर पाए, होम इनोवेशन में भी वो पार्ट नहीं ले पाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा?
1: ऐसी स्थिति में वो अभी छूटेंगे, लेकिन हम लोग जो सेकेंड फेज का करेंगे 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के मध्य में जो जनगणना की वास्तविक मनुष्य की गणना होगी, उसमें उनको सम्मिलित हम लोग करेंगे। उस समय बेघर परिवार को भी गणना, इंस्टीट्यूशनल परिवारों की भी गणना, ये भी सम्मिलित हो। अभी हम लोग केवल घरों का कर रहे हैं, क्योंकि आबादी घरों में रहती है, इसलिए उस समय उनकी गणना हो जाए,
0: इसलिए मकानों का जी।
2: अभी भी हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे और न किसी को दोहराया जाए। इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, कई परगनक ब्लॉक या गन्ना खंड में बांटा गया है किसी भी गांव को या शहर को, और प्रत्येक परगनक को वह क्षेत्र दिया गया है और उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया है, और उनको उनके ऊपर यह भी जिम्मेवारी है कि वो पूर्ण कवरेज को सुनिश्चित करें। उसी तरह से उनके ऊपर 6 परगनक के ऊपर जो सुपरवाइजर है उनकी भी जिम्मेवारी है कि पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें, और चार्ज अधिकारी की भी जिम्मेवारी है कि वो पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें। तो किसी के छूटने की आशंका बिल्कुल ही कम है,
0: लेकिन अगर छूट जाते हैं तो बाद की प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाएगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जब हम जनगणना की बात करते हैं तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि जनगणना 2 प्रक्रिया में पूरी होती है। ये जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें जो मकान होते हैं उनका सूचीकरण होता है, क्योंकि लोग तो मकान में रहते हैं, हालांकि इसमें भी हाउस होल्ड्स के नंबर्स आते हैं तो एक एवरेज नंबर्स मिल जाते हैं, लेकिन जब एक्यूरेट नंबर्स की बात करते हैं तो जो दूसरी प्रक्रिया जनगणना की होती है, जो निर्धारित होती है 9 फरवरी से 28 फरवरी, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। और जो पहली प्रक्रिया है वो अप्रैल माह से सितंबर माह तक चलती है, उसमें प्रत्येक राज्य जो है वो अपने सुविधा के अनुसार कोई भी एक महीने को चुन सकते हैं। उसी में झारखंड ने ये जो तारीख चुना है वो 16 मई से 14 जून तक। जरूरी ये है कि आइए हम सब मिलकर अपने राज्य के विकास में, अपने देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सत्येंद्र सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं उसे भी कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगा कि जब जनगणना की बात करते हैं, ये जनगणना कौन आयोजित करता है, और जब आप जनगणना कर रहे हैं तो ये जो डाटा स्टोर हो रहा है ये डाटा कहाँ जाता है?
1: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप कई लोगों को ये मन में ये बात आता होगा कि आखिर जनगणना संचालित कौन कर रहा है, तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उनके कार्यालय द्वारा होता है, और हमारे जो प्रमुख है भी श्री मृत्युंजय कुमार नारायण सर हैं, उन्हीं की देखरेख में यह हो रहा है। सेंसस एक्ट 1948 की धारा जो 4 है उसके अंतर्गत सभी स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस राज्य में जो जनगणना का नोडल है राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग है, साथ ही साथ हमारे निदेशक जो आईएएस अधिकारी हैं श्री प्रभात कुमार सर हैं, और उन्हीं की देखरेख में उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जिला के अधिकारियों, चार्ज ऑफिसरों और नगर निगम के कमिश्नर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को हम लोग संचालित कर रहे हैं। इसके जो आंकड़े हैं इसको संग्रहित करने के लिए 3 जगह सर्वर बैठाए गए हैं पूरे भारत में, एक दिल्ली में है, दूसरा लखनऊ में है और तीसरा बेंगलुरु में है। तो जो भी इनोमिनेटर या हम लोग सेल्फ इनोमिनेशन जो भी किए हैं वो सारे आंकड़े इन्हीं सर्वर पर जानने वाले हैं।
0: सत्येंद्र सर, एक लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहूंगा, क्या एक संदेश आप झारखंड वासियों को देना चाहते हैं? आप एक नेशनल ट्रेनर भी हैं और आप ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं, क्या एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को?
1: देखिए, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि आप पैनिक नहीं होंगे, चाहे हमारे जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं इनोमिनेटर, जो सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, अगर उनका ये मोबाइल मोड से चल रहा है, अगर वो किसी तरह का आपको लगता है कि डेटा सिंक नहीं हो रहा है, डेटा खुल नहीं रहा है, तो वहां पर एक रिफ्रेश बटन दिया गया है, उसको आप दबाएंगे तो पैनिक नहीं होना है, ना इसको अनइंस्टॉल करना है। साथ ही साथ झारखंड के जितने भी लोग हमारे भाई बहन हैं, वो सभी अगर किसी भी तरह का भ्रम की स्थिति होती है, उनको कोई उत्सुकता होता है, कुछ जानना होता है, तो उसके लिए भी एक टोल फ्री नंबर हमारा प्रकाशित किया गया है, जिसका नंबर है 1855 1855। आप इस पर फोन लगा करके

0: यह सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक एक्टिव रहता है और कोई भी व्यक्ति इसमें अपना प्रश्न भेज करके संतुष्ट हो सकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी अच्छी जानकारी दें, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ये विकास योजनाओं के लिए समग्र जो जानकारी आएगी उसको आधार बना करके विकास योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, और किसी भी इंडिविजुअल डेटा या किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को न अदालत में प्रस्तुत किया जाने का है, न कहीं प्रकाशित किए जाने का है, यानी पूरी तरह ये गोपनीय है।
1: मुरारी सर, आप एक नेशनल ट्रेनर होने के नाते, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते आप क्या लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे?
2: सभी झारखंड वासियों से मेरी विनम्र अपील है कि वह इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और हमारे प्रगणक जो उनके दरवाजे तक जाएंगे उनको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करें, यही हमारा अनुरोध है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता और मुरारी मोहन, आप दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को इतने महत्वपूर्ण विषय पे पूरी जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता है जिन्होंने भी कार्यक्रम सुना, आप और भी लोगों को जागरूक करेंगे और देश के सबसे बड़े प्रक्रिया में शामिल होंगे, देश के उन्नति के लिए शामिल होंगे। पूरा आकाशवाणी परिवार जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड रांची को दिल से शुक्रिया करता है कि इनकी पूरी टीम जीतोड़ मेहनत कर रही है और प्रचार प्रसार के माध्यम से, चाहे वो टीवी की बात करे, चाहे वो रेडियो की बात करे, चाहे नगर निगम की कचरे गाड़ियों की बात करे या महामहिम राज्यपाल की बात करे, हर उस माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। विद्यार्थियों की बात करें, स्कूल कॉलेजेस में अलग अलग इवेंट्स किए जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक, समाज के एक आखिरी व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचे और वो भी जनगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। आपकी पूरी टीम को और जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड रांची को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभूषरण की, अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: बढ़ते कदम, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सूत्रधार थे कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति थी प्रभूषरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चले आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से बस थोड़ी देर बाद 4:35 पे आप सुनेंगे सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्मी गाने। शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

युवावाणी कार्यक्रम शाम के 5:02 पे। आज इस कार्यक्रम में जानकारी के विषय इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में, साथ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर जीव है जरूरी विषय पर चर्चा भी होगी और वर्ल्ड बी डे पर भी चर्चा, रोचक तथ्य और समसामयिकी भी इसमें शामिल है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता गौरव पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है आकाशवाणी रेडियो से पॉडकास्ट तक का सफर, साथ ही मधुमक्खियां पारिस्थितिकी असली हीरो,

चंपारण का वो किसान जिसने गांधी को महात्मा बनाया, राजकुमार शुक्ल, उनकी पुण्यतिथि पर ये चर्चा है। प्रस्तुति होगी इस कार्यक्रम की प्रशांत गौरव की।

खेती बाड़ी कार्यक्रम 6 बजकर 2 मिनट पे। इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का विषय है अदरक और हल्दी की वैज्ञानिक खेती। इस विषय पर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सविता एक्का, इनसे बातचीत करेंगे कृष्ण जीवन पौराणिक। और कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

हमारी दुनिया कार्यक्रम 6:32 पे आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है डायन प्रथा एक सामाजिक कलंक। साथ ही आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में हिंदी वार्ता, जलवायु परिवर्तन वार्ताकार हैं सुभाष चंद्र जायसवाल। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार शाम के 7 प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल आप सुन सकेंगे 7:11 पे। आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पे। प्रायोजित कार्यक्रम रात्रि 7:45। फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीकंधा रात्रि 8:00 और 8:30 पे। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 10:00 नाटक और 10:30 पे आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से। इस कार्यक्रम में बांसी पर रागधानी में आलाप और जोड़ प्रस्तुत करेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम।

ये था कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म महबूब की मेहंदी से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थी, रचना आनंद बख्श की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म प्रेम पुजारी का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, बोल थे नीरज के, संगीत एस डी बर्मन का था। और श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म आक्रमण का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म आए दिन बाहर के का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसी साथ आज का ये कार्यक्रम बस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज जमशेदपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले की अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्ट समुदाय ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित तेल मिल गली में हुए चर्चित गोलीकांड में रांची पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू यादव को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीते 19 जनवरी को पंडरा इलाके में 55 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने कल 26 सदस्यीय टीम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूँ छवि। श्रोताओं, अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत। 5:30 से संध्या के 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी फलदार वृक्षों की खेती एवं लाभ। मनोरंजन करवाया जाएगा उड़िया लोकगीत से जितेंद्र प्रधान और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता आप सुनेंगे गर्मी के मौसम में हरी साग सब्जियों की देखभाल। भेंटवार्ताकार हैं प्रेम नायक और उनसे बातें कर रहे हैं कोमल नायक। हो लोकगीत आप सुनेंगे सीनी माई आल्डा और साथियों के स्वर में। इसके अलावा बाजार भाव आप सुनेंगे। संध्या के 6 आपको पुनः लिए चलेंगे।

हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 पर हुआ कार्यक्रम हुआ खड़ा, जिसमें जानकारी की बातों के अलावा चर्चा की जाएगी गर्मी से बचे और स्वस्थ रहें। मनोरंजन होगा सुभाष चंद्र होनागा और साथियों के स्वर में बादुरंग से। भेंटवार्ता आप सुनेंगे सिलाई से स्वरोजगार। भेंटवार्ताकार हैं शुक्र मुनि तांती और उनसे बातें कर रहे हैं राम सिंह चातर। आहिंदी लोकगीत आप सुनेंगे शकुंतला जामुंदा और साथियों के स्वर में। 6:30 पर होगा कार्यक्रम मनोरमा। 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम है। रात्रि के 8 बजे से 8:45 तक आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 से रात्रि के 9 बजे तक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9 बजे से 9:15 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9:15 से 10 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल हमारे चाईबासा केंद्र से। 10:30 से रात्रि के 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरो के रंग। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर होगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज आपको हम सुनवा रहे हैं एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ की। तो सुनिए, सबसे पहले फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले का ये नगमा। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ नगमे। अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है कुदरत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है आरती बर्मन का। तो चलिए इस गीत का हम आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई बासु केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत। अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली का ये नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर की गाए चंद नगमे। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म नसीब का ये नगमा। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यही संपन्न होता है। आज आपने सुना लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं।

कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गुलदस्ता। अब यही संपन्न होता है। आज आपने सुना लता मंगेशकर के गाए कुछ गीत। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं।

जिससे अतिरिक्त आय आपको मिल जाएगा। मौसमी फलों की तुलना में फलदार बगीचों में निराई गुड़ाई सिंचाई और खाद प्रबंधन में काफ़ी कम मेहनत और खर्च लगता है। ये पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं, कार्बन सोखते हैं, भूमि का कटाव रोकते हैं और पक्षियों मधुमक्खियों को आश्रय प्रदान करते हैं। किसान भाई बहनों, झारखंड और अन्य राज्यों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना और विभिन्न सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। आप झारखंड कृषि विभाग या अपने नज़दीकी विज्ञान केंद्र से संपर्क करके विस्तृत जानकारी और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको जानकारी दी फलदार वृक्षों की बागवानी और इसके लाभ के बारे में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आनंद लेते हैं उड़िया लोकगीत का, जितेन प्रधान और साथी के स्वरों में।

जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक

0: रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: किसान भाई बहनों, इन संदेशों के बाद जानकारी लेते हैं गर्मी के मौसम में हरी साग सब्जियों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं प्रेम नायक। आज हम गर्मियों के मौसम में हरी सब्जियों की पैदावार कैसे करते हैं और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि अभी इस गर्मी के प्रकोप से इन सब्जियों और पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो किसान भाई बहनों, आप भी इस गर्मी के मौसम में अपने खेतों बगानों में लगे पेड़ पौधों और हरी सब्जियों को बचाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, और इस विषय पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे प्रेम नायक जी से। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार।
2: जी, आपको भी और मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार।
1: जी, तो प्रेम जी, हमें गर्मियों में किस तरह से सब्जियों और पौधों की देखभाल करना शुरू कर देना चाहिए?
2: जी जी, जैसा कि हम सब जान ही रहे हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है।
1: जी,
2: सब्जियों के देखभाल और उनको उगाने के लिए फरवरी और मार्च का महीना काफी अच्छा रहता है।
1: अच्छा,
2: जो भी किसान भाई खेती करते हैं वे इन महीनों में सब्जी उगाने का काम शुरू कर देते हैं।
1: जी,
2: हम फरवरी और मार्च में इन सब्जियों की बुआई करेंगे, तभी हमें अप्रैल और मई महीना में इनका फसल मिलना शुरू हो जाएगा।
1: अच्छा, तो यानी कि हम मार्च और फरवरी में इन पौधों को लगाते हैं, बीज को बोते हैं, तो इस महीने में हमें फसल उपलब्ध हो जाएगी।
2: जी हाँ।
1: तो हम गर्मियों में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं?
2: जी आप गर्मी में हरी मिर्च, लौकी, खीरा, ककड़ी, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, बरबट्टी, टिंडा, सेम के सब की खेती कर सकते हैं।
1: अच्छा, यानी ये सब की खेती हम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं।
2: जी हाँ।
1: तो प्रेम जी, यानी हम गर्मियों में ज्यादातर हरी सब्जियां और बेल वाली सब्जियां उगा सकते हैं?
2: जी हाँ, लतेदार सब्जियां ज्यादातर लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
2: साथ ही साथ पुदीना, धनिया, पालक जैसी सब्जियां और तरबूज जैसे फल भी उगा सकते हैं।
1: जी, तो हमें भिंडी के पौधों की देखभाल कैसे करना चाहिए?
2: इस पौधों का देखभाल के लिए पौधों में नमी होना बहुत जरूरी होता है।
1: जी,
2: ऐसी स्थिति में आपको उचित मात्रा में पानी और धूप दोनों का अच्छा से ध्यान देना होगा।
1: अच्छा,
2: भिंडी के पौधों के लिए सामान्य खाद का जरूरत होता है।
1: जी,
2: भिंडी के बीज के बीज को बराबर दूरी में बोया जाता है।
1: जी,
2: और भिंडी के जो बीज होते हैं उन्हें अंकुरित होने में 1 सप्ताह का समय लगता है।
1: अच्छा,
2: भिंडी के पौधे जब 6 इंच के हो जाए तब हल्की हल्की मिट्टियों में पत्तों को हटाकर इनके जड़ों में खाद या गोबर की खाद डाल दीजिए।
1: अच्छा,
2: आप देखेंगे 2.5 महीने के बाद पौधों में भिंडी आना शुरू हो जाएंगे।
1: अच्छा,
2: इस तरह से आप भिंडी की देखभाल करके भिंडी की फसल प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। प्रेम जी, हम अक्सर देखते हैं कि बाजारों में हरी मिर्च की भी काफी मांग होती है, तो मिर्च के पौधों और इनकी फसलों की देखभाल किस तरह से हमें करनी चाहिए?
2: सबसे तीखा मिर्च गर्मी में ही उगाया जाता है।
1: जी जी,
2: तो इन फसलों को आप बड़ी आसानी से रोपण कर बो या उगा सकते हैं।
1: जी,
2: इन पौधों के बीज की दूरी लगभग 35 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए।
1: अच्छा,
2: और गहराई मिट्टी में कम से कम 1 से 2 इंच सेंटीमीटर की होनी चाहिए।
1: अच्छा,
2: इन दूरियों के हिसाब से आप मिर्च के पौधों की बुआई कर सकते हैं।
1: जी,
2: 6 से 8 दिन के भीतर इन बीजों में अंकुरण आना शुरू हो जाता है।
1: अच्छा,
2: हफ्ते में 3 से 4 बार पौधों को पानी दीजिए।
1: जी जी,
2: हरी मिर्च के लिए पौधे 2 से 3 हफ्तों में पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
1: अच्छा, तो प्रेम जी, लौकी के पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए और किस तरह की मिट्टी में उगाना चाहिए?
2: इसके पौधों को या बीज को आप दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं।
1: जी,
2: बस आप जहां बीज लगा रहे हैं वहां पानी जमा नहीं होना चाहिए।
1: जी, जी।
2: लौकी का खेती में बहुत ज्यादा तापमान का जरूरत होता है, इसलिए अभी का मौसम काफी अच्छा है इसको लगाने का।
1: अच्छा, तो प्रेम जी, इसके बीज थोड़े से सख्त होते हैं, तो इन

0: यानी बीज की बुआई डायरेक्ट खेत में कर देते हैं क्या?
1: जी सीधे खेत में बीज को बो सकते हैं,
0: जी
1: या फिर लौकी के बीज को रात भर यानी 24 घंटे के लिए भिगाकर रख दीजिए, फिर दूसरे दिन हल्की धूप लगाकर खेत में बीज को बो दीजिए।
0: अच्छा, लौकी के जो बीज हैं उनके बीज को या पौधे को कितनी दूरी पर लगानी चाहिए?
1: इसकी बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 6 से 8 फीट या पौधे से पौधे की दूरी 1 से 2 फीट काफी है।
0: जी,
1: बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बो दीजिए।
0: तो खाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं?
1: गर्मियों में सब्जियों को अनिश्चित समय पर खाद देना पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है।
0: अच्छा
1: पौधों को खाद देने के लिए आप सुबह या शाम के समय दें।
0: जी
1: आप पौधों को बार बार खाद देने से भी बचें,
0: जी
1: क्योंकि इससे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। और गोबर का खाद सबसे अच्छा रहता है,
0: जी
1: और गीली मिट्टी में खाद देने से बचें। जब मिट्टी सूख जाए तब खाद दीजिए, फिर पानी।
0: अच्छा, तो करेला के पौधों की देखभाल कैसे करें ताकि हमें इस गर्मी के मौसम में अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके?
1: अभी गर्मी में करेले के पौधों को पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है,
0: जी,
1: इसलिए इसकी सिंचाई का खास ख्याल रखिए।
0: बिल्कुल।
1: गर्मी में करेले के पौधों को 5 दिन के अंदर पानी देना शुरू कर दीजिए।
0: जी,
1: बीज लगाने के बाद इनके पौधों को छायादार जगह में रखें। अगर आप इन्हें गमले में लगाए हैं तो ताकि मिट्टी में नमी बने रहे।
0: जी
1: 5 से 10 दिन के अंदर बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा।
0: जी जी
1: अगर आप चाहें तो हल्की धूप में भी इनके पौधे को लगा सकते हैं।
0: जी यानी प्रेम जी, अभी जो गर्मी का मौसम है, हम यूं कहें तो हमें पूरी तरह जो सीधे पौधे पे जो कड़ी धूप पड़ेगी उन पे पौधे नहीं रखना, यानी कि हल्की छाया पे या बीच मतलब पौधे को लगाना है, खेती करना है ये, और जो भी हमारे गमले में लगे हुए उनको छाया में रखना है।
1: जी हाँ बिल्कुल, उसी तरह पालक का जड़ बहुत छोटा होता है,
0: जी
1: इसलिए यह जमीन के नीचे ज़्यादा नहीं जा पाती है।
0: जी
1: इस कारण पालक का ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी देने का ज़रूरत होता है।
0: बिल्कुल
1: पालक के पौधों की देखभाल के लिए किसान भाई को पालक के पौधों को मिट्टी मिट्टी को नम रखना चाहिए, ताकि पालक की फसल ज़्यादा हो।
0: जी यानी प्रेम जी, गर्मी के मौसम में पौधों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है।
1: पानी के साथ साथ पोषक तत्वों को भी जरूरत होती है।
0: जी जी बिल्कुल। तो प्रेम जी, और किन किन ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम गर्मी में इनकी खेती करेंगे तो?
1: जी हम इस मौसम में कई प्रकार की सब्जियों और अन्य पौधे उगाते हैं, जिन्हें अपनी अपनी जरूरत के अनुसार देखभाल करने का जरूरत होता है।
0: जी
1: जैसे कि जब भी इनको लगाने की शुरुआत करते हैं तो मिट्टी का जांच करवा लीजिए। गर्मियों में ज़रूरत के हिसाब से पानी दीजिए।
0: जी
1: मिट्टी की गुणवत्ता में करें सुधार।
0: जी
1: गर्मियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाए।
0: बिल्कुल
1: ज़रूरत के अनुसार गर्मी में पौधों में धूप में रखें।
0: जी
1: सब्जियों की कटाई का ध्यान रखें। सही समय पर दे सब्जियों को खाद दीजिए।
0: अच्छा
1: और जब भी इन फसलों की तुड़ाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उतना ही फसल तोड़े जितना आपको बाजार तक ले जाना है या फिर अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है,
0: जी
1: वरना सड़ने और सूखने का खतरा बना रहेगा।
0: बिल्कुल, यानी कि प्रेम जी, हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं और इनकी खेती करते हैं और देखभाल भी करें तो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
1: जी हाँ
0: तो आज आपने हमें गर्मी के मौसम में हरी सब्जियों के पौधों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: किसान भाई बहनों, कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं हो लोकगीत सिनेमाई आल्डा और साथी के स्वरों में।

किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस वर्ष 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव ने आज आगामी वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुश्री राव ने कहा कि मोबाइल ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज के जरिए प्रासंगिक उत्पादों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टॉल के स्थानों को तलाशने में क्रेताओं और प्रदर्शकों के लिए मददगार होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने आज रांची सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। आकाशवाणी डाल्टनगंज नियंत्रण कक्ष के तकनीशियन श्री मनोज कुमार का कल उनके पैतृक स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक मृत्यु से आकाशवाणी रांची और डाल्टनगंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और ईश्वर से यह कामना की उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

नया आकाशवाणी रिया चयभाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज़ सेवन आई मतना ना आयुब पिंग चे बजाने ते दो मिनट हो बस का याना कार्यक्रम हो आकड़ा आयुब इंचे बिन लगी नालिंग बेटा जो कने महेंद्र गोई है सभी को आलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लिख गए इस पूरे लिंग सगमगत डे इना को मियन नियतलिंग आयुब इंचे बिना आयुम लगिन एफएम रेडियो जपारेगे टाइम पे चेमर ना तुरंग बेन जपाओ जो इन्हें रदो एला आयुम इचे बिना लिंग सबिन को ते आयर अटकर जगर ची जानकारी रिया जगर ना बरसिंग इस पूरे जेटे बढ़ाओ या ना अन जेटी ऐते बंचाउन पेन और ओ अभिना होमो स्वास्थ्य रिके बेन जेटे इस पूरे बढ़ायन लिखते अबू होमो जगसुन लगे द अबुगे नकबो उड़ते बाबा स्वास्थ्य रिके लगे दो अब पूरे जेटरे का पाइटी ते हो बना पाइटी रियो बो अब इधेंगे ते बो सबे का पाइटी को अंडो जेटे चिलके पूरे हो बहुत अनल का अटकर के ते अब बो इन अब छुट्टीं जे जान जितन तारे बो पाइटी तें रियो अब समय ललके ते पाइटी ते हो बना अंडो जेटे ललके ते छुट्टीं ते हो बाओ अब हमो स्वास्थ्य काते इन दो शबिन पाइटी कबू पाइटी पूरे दिए इनमेंते अब होमोगे इनगे मैं धन बीती तेने मैंने रटी के इनमेंते आते अब निन होमो बोगिल कते स्वास्थ्य रिके ऐसो रिना गरो जो मैना जहा जितापा सेनो रेदो अब इदिंग रेबो सेनो जा अंड इनका सेनो यदि ऐसो पूरे गे जरूरी हो बना एन रदो अब दा को मंडी को बोगीते नूके ते अंडो ना दो उली को बिटा

0: అక్కడ కార్యక్రమం నిండకి చెబావుతున్న మరి సెన్నిడి తినలింగ్ సెనో సెనో తె మిని జుకలిక అబు గురుజు జగరబు అయం లేయ
1: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना कल
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मास्क के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: निया साड़ी इंगुल लोगे तिसिंगे हुआ कड़ा कार्यक्रम चबावतना सेनिडी तिनलिंग मर सेनो सेनो ते तुंडुरे अनोमिसे हुआ कड़ा आयुम के शबिन दादा दही देखो अलिंग पे महेंद्र गुई पे ते मर सिविल जोहार।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहनों, अभी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और बाकी स्कूलों में कहीं कहीं छुट्टियां नहीं हुई हैं, लेकिन पूरे एक साल के इंतज़ार के बाद गर्मी की छुट्टियां आती हैं और अक्सर हम देखते हैं कि छुट्टियां शुरू होने से पहले ही बच्चों के लिए कोचिंग और ट्यूटर का इंतज़ाम कर लिया जाता है। लेकिन इनके साथ ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के मानसिक विकास एवं व्यवहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए उनका मनोविज्ञान समझने की कोशिश करें। और इस दौरान माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे उनकी रुचियों को समझते हुए उनमें रचनात्मकता का विकास करें। तो बहनों, इस गर्मी की छुट्टियां आप अपने बच्चों के साथ अलग तरीके से बिताएं और उन्हें बेहतर इंसान बनाएं। बहनों, आमतौर पर हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों का मनोविज्ञान समझ नहीं पाते और उनमें छिपी प्रतिभा को भी आंक नहीं पाते। माता पिता का दायित्व है कि वे बच्चों को जीने की कला सिखाएं, उन्हें घर में ऐसा माहौल दें जो उन्हें सामाजिक और व्यवहारिक बनाए। बच्चे की रुचि को समझना भी बेहद ज़रूरी है और उसकी किसी भी हॉबी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, चाहे वह नृत्य संगीत हो या चित्रकला या खेल हो। जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि हो, उसके बारे में बच्चे से बातचीत करें और उनसे जुड़ी वस्तुओं के बारे में बताएं और उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए करें, तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आएंगे। हर बच्चे में जन्मजात एक प्रतिभा होती है जिसे निखारने में आपको उनकी मदद करनी चाहिए और इसके लिए गर्मी की छुट्टियों से बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता। इन दिनों बच्चों की वैयक्तिक रुचियों को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यार्थी काल वह समय होता है जहां उनकी प्रतिभा को एक नए आयाम की तलाश होती है और उसे सही मार्गदर्शन देना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को हर समय स्कूली किताबों में उलझाए रखना भी ठीक नहीं है। आप बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें हमारी संस्कृति, इतिहास, महापुरुषों, परिवार, समाज, राष्ट्र, रिश्तेदारी, गीत संगीत, लोक व्यवहार के मूल्यों से भी परिचित कराएं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में माता पिता दोनों कामकाजी हैं, जिस वजह से वे बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते हैं। कई बार इस वजह से बच्चा गुमसुम हुआ अकेला हो जाता है। बढ़ती उम्र के बच्चों को भी कई समस्याएं होती है, उन्हें सुलझाने के लिए गर्मी की छुट्टियों में उनके लिए समय निकालें, उनके साथ बैठकर खाना खाएं और यह समय आपसी बातचीत और हंसने बोलने के लिए रखें। खाना खाते वक्त आप उनसे भोजन का महत्व और किसान की मेहनत का मूल्य समझा सकते हैं। बच्चा अपने जीवन में इस बात को उतार कर ताउम्र इसका अनुसरण करेगा और कभी भोजन का अपमान नहीं करेगा। आपकी एक छोटी सी पहल राष्ट्रहित में बहुत बड़ा योगदान देगी। बच्चों को स्वावलंबन का पाठ भी पढ़ाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। उनसे घर के छोटे मोटे काम करवाएं, इनसे उन्हें जीवन की सीख मिलती है। उन्हें लोगों, परिवार के रिश्तेदारों से मिलवाएं। इस दौरान उसे बातचीत का तौर तरीका आएगा। बेशक ये छोटी सी बात है, पर इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह दूसरों के सामने बातचीत करने में नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए छुट्टियों में बच्चों को रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ज़रूर ले जाएं और छुट्टियों में गैजेट्स के भरोसे बच्चे को ना छोड़ें। सोशल मीडिया पर बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर भी नज़र रखें। आप उन्हें कहीं घुमाने ले जाइए, जैसे प्रकृति के करीब। इससे प्रकृति से वो बाखूबी परिचित होगा और इससे उसे लाभ भी मिलेगा। धार्मिक स्थल पर जाकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और ऐतिहासिक जगहों पर जाकर उन्हें इतिहास की जानकारी मिलती है। बच्चों को लाभ के लिए छुट्टियों में आपके द्वारा उठाए गए ये छोटे छोटे कदम उन्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे और उनमें सकारात्मकता का विकास करेंगे। तो बहनों, इस गर्मियों की छुट्टी में आप भी ऐसी कोशिश ज़रूर करें।
इस बातचीत के बाद भानु आइए अब हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: बड़ा परिवार जो तो मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नेहर में बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब ओडा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ मना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो था तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखंड बात हो जाए
7: तुम बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थानसोए भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
8: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा

0: ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱚᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱩᱛᱩᱱ ᱠᱤᱛᱢᱟᱹᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱩᱲᱤ ᱩᱲᱤ ᱱᱮ ᱵᱟᱜᱮ ᱟᱛᱚᱜ ᱠᱤᱱ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱤ ᱟᱨ ᱯᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱩᱡ ᱟᱸᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱢᱮᱭᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟᱱ
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकतानुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है, जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं इसके पास या आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो तो आप पालक माता पिता बन सकते हैं, और साथ ही आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी होने चाहिए। परिवार हर बच्चे का अधिकार है। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131 64 और 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहनों, ये जानकारी समाप्त हुई। इस जानकारी के बाद बहनों, आइए अब हम मनोरंजन करते हैं इस गीत से।

शरीर को भी ठंडक पहुंचाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं रायता बनाने की रेसिपी को। और हाँ, आज हम जानकारी लेंगे करेले का रायता बनाने की रेसिपी के बारे में। तो इसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे दो मध्यम आकार के करेले पतले स्लाइस में कटे हुए, और दो कप दही, एक मध्यम आकार का प्याज बारीक कटा हुआ, और दो हरी मिर्च बीज निकाल कर बारीक कटी हुई, और एक बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक चौथाई छोटा चम्मच भुना जीरा, और आवश्यकता अनुसार नमक और तेल। अब हम विधि को शुरू करते हैं। करेले को हल्के हाथ से छील लें और स्लाइस में काट लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, करेले के स्लाइस को तल कर निकाल लें। दही में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, भुना जीरा और नमक मिलाकर फेंटें। इसके बाद सारे सामग्री मिक्स होने के बाद कुरकुरे तले हुए करेले को डालकर तुरंत परोसें। तो इस तरह से हमारा करेले का रायता तैयार है। चलिए अब हम कद्दू बीज और अंगूर रायता की रेसिपी को जानते हैं। इसके लिए हमें एक कप अंगूर चाहिए होती है, दो कप दही, एक बड़ा चम्मच चीनी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, और एक चौथाई छोटा चम्मच

0: अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: श्रीनाथ यूनिवर्सिटी आदित्यपुर के योग विभाग और सरायकेला खरसावां जिला योगासन खेल संघ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य आयोजन हुआ। आयोजन समिति के सचिव उदय सिंहदेव ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर मिला। उन्होंने कहा कि
2: सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ और इसमें बहुत सारे प्रतियोगी जो ग्रामीण क्षेत्र में छुपे हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपना खेल दिखाने का मौका मिला और आज हम लोग यहां पर डिस्ट्रिक्ट टीम का भी सिलेक्शन किए हैं और हम लोग देखे हैं कि हमारे यहां पर बहुत सारे बच्चे योगा के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं।
1: भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य गम्हरिया शंभु मंडल ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप गया है। उन्होंने अनियमित बिजली आपूर्ति के साथ साथ सही तरीके से केबलिंग नहीं करने तथा स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोलाबिरा क्षेत्र में काफी कम ऊंचाई पर बिजली के तार झूल रहे हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि
3: पूरा जिला में बिजली विभाग का स्थिति चरमरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा टाइम बिजली गायब ही रहता है। अगर कोलाबिरा क्षेत्र में देखा जाए तो एक स्कूल है जहां उसका आगे में तार झूला हुआ है, 2 से 3 खंभा तक का पोल है। यदि उस जगह में केबल दिया जाए तो सुरक्षित रहेगा। यदि बिजली विभाग से कोई NOC भी मांग रहा है कि भाई हमें आपका बिजली नहीं चाहिए तो NOC देने के लिए भी बिजली विभाग आनाकानी करता है। 6 महीना तक उसका समय लगाते हैं। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है गाँव घर में और उनका बिल तक अभी जल्दी में नहीं आ रहा है। 6-7 महीना में आ रहा है, हरे भरकम बिल देकर दे रहा है।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा झारखंड के 3 जिलों पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में वर्ग 9 एवं 10 के उड़िया छात्रों के बीच उड़िया साहित्य की पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही है। इससे भाषा संरक्षण को लेकर उत्कल सम्मेलनी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को काफी बल मिल रहा है। जिला पर्यवेक्षक सुशील कुमार सारंगी ने कहा कि उड़िया भाषा एवं साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें और भाषा के प्रति उनका लगाव बढ़े। सुशील कुमार सड़ंगी ने कहा कि
4: उड़िया भाषा जो किताब साहित्य किताब 9 एवं 10 का किताब हम लोग निःशुल्क वितरण किए। इस जो किताब हम लोग वितरण किए यह किताब 1998 यह किताब चल रहा था हम लोग का झारखंड में, लेकिन यह किताब बड़ी दुख की बात है कि झारखंड सरकार द्वारा यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा था। जो हम लोग के झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय दिनेश सरंगी जी के प्रयास से झारखंड में 3 जिला में वितरण किया जा रहा है और उसी के ये में आज सरायकेला में भी वितरण किया गया।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा पाठ पुस्तक वितरण के माध्यम से भाषा संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान को साकार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उड़िया शिक्षकों का मानदेय पिछले 2 वर्षों से लंबित है जिससे यह अभियान कमजोर पड़ रहा है। बिना मानदेय के शिक्षक इस अभियान को प्रभावी ढंग से कैसे पूरा करेंगे यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
0: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 होने को हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक का ये गीत। इस गीत को आवाजें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आमला टोला चाईबासा झारखंड से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। रेलवे रोड गजरुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जितेंद्र बीरक, मीका बीरक। छोटा नेमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का ये प्यारा सनगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है दलाल। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन, माहुलडिया सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनीय संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु तनु भाई, नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और किशोर महतो, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहरा जहां, ये हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सादुल शहर राजस्थान से हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। गांव लोहड़गढ़ ठाकरावाला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह और गुरनो सिंह। न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीश अंश और अंशु और मुन्ना। चलिए इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं दलाल फिल्म का ये नगमा।

0: मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जा...

0: நான் சுயம் இனி கட்டுப்பாடு. பாரதிய சேனா.
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
3: ओड़ा परिवार जो बनमा बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नौकान परिस्थिति बोले सब ओड़ा वापस को रुआड़ा धारा आम बोले रुआड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: मंगलोर गाँव बारगड़ा थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थानसोय भुरुपा सिनकना एसो दुकुर मिनाया यापा में रियल तपा में रियल वा बेटा निका
7: अन्या तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मुनी में बुरुड़ी ने बागिया तो के दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तने बुरुरम गोया तब जाय तेरे काका गुंगो उन्हें बुकोको काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरन पे अपील तना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम तेना मिल अपील तना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700014242।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
11: इन महत्वपूर्ण संदेशों के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इतिहास का ये गीत अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं दिलीप सेन और समीर सेन का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं मुकेश दिनकर कासलेकर, अमरावती से विमल विशाखा कासलेकर, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, राहे सरिता ग्वानकर, सिद्धांत ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश ग्वानकर, वैशाली ग्वानकर, कुमारी ध्वनि ग्वानकर उपरी, दुर्गाए सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता पदभरनी से सी आर कुलकर्णी, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, अनामिका कुमारी। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं इतिहास फिल्म का ये नगमा।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। आशा करती हूँ सभी गीत पसंद आए होंगे, लेकिन जाइएगा नहीं, रजनीकंधा कार्यक्रम में फिर से पेश कर रहे हैं फरमाइशी गीत। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:01 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं फिल्म सरफरोश का ये नगमा, आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल राठौर। गांव हिरण से छप्पर, यमुनानगर हरियाणा से हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से हैं जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और साथी। दंदरेगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, लिरितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमन बिदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। चलिए इन सब की बसंत पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सरफरोश का ये नगमा।
1: बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे। दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है दीवाना। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ें हैं, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, अनिता पुरी, ममता पुरी, मेघा पुरी, पूजा पुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीश पुरी, सतीश पुरी, राकेश पुरी, विनोद पुरी, पाली पुरी, डीसी पुरी, अरुण पुरी, नेहा पुरी, एकता पुरी, शमी पुरी, विनो बोधी पुरी, सुनील पुरी, वीके पुरी, आर एस पुरी, न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभी अनिश, अंबिका, आशीष, अमित, अमीश, मनीष और मुन्ना। बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवसेरे। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं दीवाना फिल्म का ये नगमा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे रंग फिल्म का ये गीत। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल थे। संगीत था नदीम श्रवण का। और इस गीत को सुनना चाहते थे महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झवेंद्र कुमार वर्मा। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, आसमा सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुजताफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बकाकुला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। श्रोताओं, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है कसूर। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ है, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झवेंद्र कुमार वर्मा। दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवे से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी। चलिए इन सब की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं जुर्म फिल्म का गीत कुमार शानू और साधना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और इसको गीत को सुनना चाहते हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी, गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर

राष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बीटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार, मजगांव से अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मजहर हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला टोलर, आजम भाई, विरोची गोप, सबा अहमद। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं जुर्म फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, समय की कमी के कारण हम आपको पूरा गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन

0: भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर

0: 73,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96 रुपए और 83 पैसे पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
4: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
4: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
3: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
4: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
3: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
5: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
3: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization, FAO, at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
4: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल

0: समर्पित करता हूं।
1: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Defence Minister Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Interacting with the Indian diaspora of South Korea in Seoul, the Defence Minister said the operation was proof that India will not tolerate terrorism in any form.
2: India's policy today is not reactive but proactive. Personally, I also believe that national security will not be compromised at any cost. With this vision, India is rapidly promoting indigenous defense manufacturing. Before 2014, our total defense production used to be approximately worth 44,000-55,000 crores. Today, it has increased to 1,54,000 crores, and within the next month, it is expected to reach nearly 1,75,000 crores.
3: 1,75,000 crore aap dekhne ko milega.
1: The Defence Minister also chaired the India-South Korea Defence Industry Business Roundtable in Seoul. Speaking on the occasion, Mr. Singh said the two countries can jointly develop and produce advanced technologies and defence systems for the future. During the event, two agreements were also signed, signalling a promising future for India-Korea Defence Innovation and Technology Partnership. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabana during a land handover ceremony to the Border Security Force BSF for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. Repolling in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal will be held tomorrow. Six candidates, including two independents, are in the fray. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan yesterday withdrew his nomination from the contest. However, his name will remain on the ballot as the deadline for withdrawal of nominations has already passed. The Election Commission had earlier declared the polling held on 29th of April in Falta void over allegations of large-scale malpractice and ordered a fresh poll in all 285 booths. The counting of votes will take place on the 24th of this month. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. During the meeting, serious concerns were also raised over the growing spread of misinformation related to competitive examinations through anonymous online groups. Mr. Pradhan directed a focused crackdown on such networks, including proactive identification, blocking and taking down of channels spreading fake information. Meanwhile, a Delhi court has sent the five accused in the NEET paper leak case to judicial custody till the 2nd of next month. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations, UN in its report, projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the media update on the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment, and growth in services exports continue to support its economy. Director of UN's Economic Analysis and Policy Division, Shantanu Mukherjee, also noted that India's diversified energy sources, strong refining capacity, large foreign exchange reserves, and fiscal flexibility could help cushion the impact of rising oil prices caused by tensions in the West Asia and disruptions in the Strait of Hormuz. Benchmark domestic equity indices ended with marginal gains today. We have a report.
0: Sensex rose by 118 points to close at 75,318, while Nifty added 41 points to settle at 23,659. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap 100 jumped 0.5%, while the small-cap 100 ended on a flat note with a positive bias. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 30 paise to close at a record low of 96 rupees and 83 paise against the US dollar. Arjun Chaudhary for Akashvani News.
1: Meanwhile, the growth of the combined index of 8 core industries in the country rose to 1.7% in April this year on an annual basis, up from the revised 1.2% in March. The India Met Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45-degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heat wave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
4: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashvani News, Delhi.
1: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
5: Good evening, listeners, and welcome to the Spotlight program. I am Anubha Rohatgi, and the focus of our discussion today is PM's visit to 5 nations, strengthening bilateral ties with Italy. Former Ambassador Anil Vadhva now joins me to share his views on the significance of this visit. Ambassador Vadhva, welcome to Akashvani's Spotlight program.
6: Thank you.
5: Ambassador Vadhva, Prime Minister Modi's visit to Italy is the last leg of his 5-nation tour. Now, you've been our ambassador to Italy in the past, so you've not only witnessed the progression of India-Italy relationship, but you've also played an important role in shaping it. Now, today, at the joint statement that the Prime Minister made along with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni, he said that the two nations have now decided to upgrade their relationship to special strategic partnership. And let's first listen to what Prime Minister Modi said about India-Italy special strategic partnership.
6: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर।
7: इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्त की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दो तरफा ताल्लुकात के खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर खोज किया है।
6: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। लोगों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
7: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए। खतरों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
6: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
7: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
6: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
7: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाज रानी की आजादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
8: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
7: وزیر اعظم مودی نے اٹلی کے صدر سرگیو ماتاریلا سے بھی ملاقات کی اور تجارت، ٹیکنالوجی، صاف ستھری توانائی اور ثقافت جیسے شعبوں میں دو طرفہ ساجیداری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کے تحت کل اٹلی پہنچے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن اور ناروے کا اپنا دورہ مکمل کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو آج اٹلی کے روم میں فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن ایف اے او کے صدر دفتر میں باوقار ایگریکولا اعزاز سے نوازا گیا۔ اعزاز حاصل کرنے پر وزیر اعظم نے اس انعام کو بھارت کے لاکھوں کسانوں، مویشی پالنے والوں، ماہی گیر کسانوں، زرعی سائنسدانوں اور کارکنوں کو منسوب کیا۔ یہ انعام ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کو ڈونگ یو کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اعزاز خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے تئیں بھارت کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خوراک کی یقینی فراہمی محض پالیسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے تئیں ذمہ داری بھی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت پائیدار، موسم کے مطابق لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار زرعی ایکو نظام تشکیل دے رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں سائنسی زراعت کو مشن موڈ پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ پیداوار میں ہیں
6: آج ہمارا دیش ایگریکلچر سیکٹر میں سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن ڈریون اپروچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم صرف پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہی نہیں، ایک ایسا فارمنگ ایکو سسٹم سسٹمبل بھی ہو، کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو اور فیوچر ریڈی بھی ہو، اور اس لیے پورے بھارت میں سائنٹیفک ایگریکلچر کو مشن موڈ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
7: ایگریکولا اعزاز ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دیا گیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ اعزاز کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور افراد کو دیا جاتا ہے۔ یہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی مدد کے ساتھ 100 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں تقریب کے دوران بھارت میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبد الناصر الشالی نے کہا کہ دونوں ممالک نے سال 2032 تک باہمی تجارت کا 200 ارب امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا ہے۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ سوبیندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا سی اے اے کے تحت غیر قانونی بنگلہ طور سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرحد پر باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کو زمین سونپنے کی ایک تقریب کے دوران نبنا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست بی ایس ایف کے حوالے کیا جائے گا، یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے بی ڈی آر کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا، حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں بی ایس ایف کے حوالے کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول سرکار ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ جناب ادھیکاری نے واضح کیا کہ سی اے اے کے تحت تحفظ فراہم کردہ 7 برادریوں کے اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ وہ 31 دسمبر 2024 سے قبل بھارت میں داخل ہوئے ہوں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آنے والے نیٹ یو جی امتحان کے محفوظ، بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر دوبارہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جناب پردھان نے یہ بات آج نئی دلی میں مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح جائزہ میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انڈر گریجویٹ طبی تعلیم میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان 21 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ اس دوران دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں 5 ملزمین کو اگلے مہینے کی 2 تاریخ تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ان ملزمین میں مانگی لال کھاٹک، وکاس بیوال، دنیش بیوال، یش یادو اور دھننجے لوکھنڈے شامل ہیں۔ عدالت نے ایک دیگر ملزم شبھم خیرنار پیپر میں کہا ہے کہ خیرنار کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ ان دیگر ملزمین کی پہچان کی جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے جنہیں خیرنار نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچے بیچے تھے۔ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے درمیان امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ہوئی بےضابطگیوں کی جامع جانچ کی ذمہ داری کا کام CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मर्दमशुमारी के हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जुनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निजामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरत हाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरत हाल और इम्कानात से मुतालिक कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत, ढांचा जाती असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तफाक कर लिया है। परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित

0: किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिससे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
2: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20

0: हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूँ, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये

0: हॉर्मोज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे, जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रमोट कॉमन स्टैंडर्ड्स। वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर, एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स। वी विल पार्टनर विद अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन इन सोलर एनर्जी। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कॉस्ट आर कमिंग डाउन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी इज इम्प्रूविंग। It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत के इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूँगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक

0: साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे। और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था। इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो 4 देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, ये आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में

0: किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
1: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
2: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची से प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको हम सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हम आज पेश कर रहे हैं सुखविंदर सिंह, कमाल खान, शंकर महादेवन, शाजिया मंजूर और विभा शर्मा की आवाज़ों में चंद गजलें। चलिए हम गजलों का सिलसिला शुरू करते हैं सुखविंदर सिंह के इस गजल से।

का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सुरों के रंग कार्यक्रम में हम अलग अलग रंग यानी अलग अलग गीत पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अजनबी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, सूर्यकिरण कार्यक्रम में आज आपने सुना फिल्म अजनबी का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आर डी बर्मन का। उसके बाद हमने आपको सुनाया फर्स्ट फिल्म का गीत मुकेश और लता की आवाज़ में। उसके बाद आपको मैंने सुनाया अगर तुम ना होते फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलशन बावरा के बोल थे, संगीत था आर डी बर्मन का। महबूब की मेहंदी का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और कार्यक्रम के अंत में आपने सुना कुर्बानी फिल्म का गीत अमित कुमार और कंचन की आवाज़ों में। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को फतेह बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी न्यूज चरपाए अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organisation at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honored with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the